ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वे नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम

गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के छह खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि सात को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान

0: मुखमत दाली बेडिकोव को हराया। रोहित पोथियाना नितिन नोपोंगनबा मेतई ओइना प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज का विचार। विषय है, जब पाप हो जाए तो क्या करें। आलेख और निवेदन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
2: श्रोताओ, ये घोर कलयुग है। इस समय आसुरी शक्तियां समूह बनाकर पापाचार को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का तामसिक शक्तियों का शिकार होकर पापाचरण में लिप्त हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, दुख की बात जरूर है कि हम अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को भूलकर पापाचरण में लिप्त हो जाते हैं। वैसे कुछ नास्तिक लोग जो भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, वे पाप और पुण्य को कहाँ स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है। हाँ, वे कर्मों का विभाजन अच्छे और बुरे कर्मों के रूप में करते हैं और बुराई से अच्छाई की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उन्हें न देखकर अपने शास्त्र, संस्कृति और साहित्य को देखना चाहिए। इसीलिए गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यानी संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। पाप शोक का, ग्लानि का, हीनता का मार्ग है। इसीलिए पाप से बचकर ही चलना चाहिए, और अगर हो भी जाए तो सब धर्मों को छोड़कर, दोनों टोटकों को छोड़कर, मंत्रों को छोड़कर एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण में आना ही पाप से मुक्ति का रास्ता है। किसी भी तरह का पाप हो तो प्रायश्चित ही उसका रास्ता है। भगवान की शरण में होकर दोबारा पाप न करने की शपथ लेकर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पाप का भार उतर जाता है। एक छोटी सी कथा याद आती है। एक भक्त था जो पापों से बहुत परेशान था। उसने भगवान से बहुत प्रार्थना की। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले कि फलानी जगह पर लोग अपनी पाप की गठरी टांग कर आ जाते हैं और पाप से मुक्त हो जाते हैं। शर्त यही है कि अपनी गठरी वहां टांग कर दूसरे की गठरी लाना होता है। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अपने पापों को एक गठरी में बांधकर उस जगह की तरफ चल पड़ा। वहाँ अपनी गठरी टांग कर वो दूसरी गठरी तलाश करने लगा, लेकिन वे सब बहुत बड़ी बड़ी गठरियाँ थीं। ये देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की, ये सब तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी गठरी वाले पाप हैं, मुझे तो मेरी गठरी ही भली। और वह अपनी गठरी सिर पर धरकर वापस घर आ जाता है और बिना किसी दूसरे के पाप देखे अपना भजन करने लगता है। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगते हैं। श्रोताओ, हमें ये देख लेना चाहिए कि एक बार भगवान की शरण में आकर प्रायश्चित करते हुए साधक का ध्यान दूसरों के पाप गिनवाने में नहीं बल्कि भजन करके बिताने की तरफ होना चाहिए। कुछ लोग पाप के डर से आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मसला है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपने पापों में आत्महत्या के द्वारा

0: एक और नया पाप न जुड़े, वरना पतरस, जिसने जीसस की पहचान बताकर उन्हें गिरफ्तार करवाया था, ग्लानी में डूबकर आत्महत्या कर बैठता है। ठीक ऐसे ही अमेरिका का क्लाड इथरली, जिसने जापान पर अणुबम गिराए थे, अपना पाप और संहार देखकर विक्षिप्त हो गया था, उसने भी आत्महत्या कर ली थी। पर क्या उनकी मुक्ति हुई? क्या वे आत्म शांति को प्राप्त हुए? जाहिर सी बात है, नहीं। तो फिर हम ये गलत मार्ग क्यों पकड़ें? क्यों न भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर पाप से तौबा कर लें?
1: जब पाप हो जाए तो क्या करें? जी हां, इस विषय पर आप सुन रहे थे आज का विचार। आलेख और वाचन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में पहला भजन सुनते हैं हरिहरन और साथियों के स्वरों में।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों का गया हुआ ये भजन। अगला भक्ति गीत सुनिए सुरेश वाडेकर और साथियों के स्वरों में।

सुरेश वाडेकर और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाना चाहें तो मिलाइए, सुबह के ठीक 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 56 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 58 तक सस्वर गायन।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानी हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। इसका प्रसारण हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से करेंगे। सुगम संगीत सुनिएगा शाम 7:45 पर और रात 10:30 पर। लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:30 और फिल्म संगीत शाम 6:05 पर, रात 8 और रात 9:15 पर। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण हमारे केंद्र से होगा शाम 7:00। आज का ग्रामीण जगत कार्यक्रम लेकर आएंगे श्री अनिल सिंह और श्री दीवान दान रत्नू।

युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुन सकते हैं हमारे केंद्र से शाम 5:05 पर। आज का युवाणी कार्यक्रम पेश करेंगे निशा शर्मा और सुमन विश्नोई। बहनें सुनेंगी महिला जगत कार्यक्रम दिन में 1:05 पर। आज का कार्यक्रम बहनों के लिए लेकर आएंगी श्रीमती गीता शर्मा और श्रीमती नेहा गोस्वामी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अलावा इसके दिन में 12:40 पर और सुबह 10 और 11 भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। नाटक दुल्हों की चोरी, जी हां, इसे आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से दिन में 12:10 पर। इसके लेखक श्री मदन शर्मा।

0: काम मोहिनुद्दीन माहिर। समय याद रखिएगा, सुबह 8:30, कार्यक्रम होगा सौरभ। लोक संगीत सुनिएगा सुबह 9:10 पर, और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1281वां अंक आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से सुबह 9:30 पर। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर, और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय मिलाना चाहें तो मिलाइए, सुबह के ठीक 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा की वार्ता, खेत की लागत कैसे कम करें।
1: किसान भाया राम राम। आज बात करा खेत्र मैंने लागत कम किया करा। भारत रे कसिर मैंने आजादी रे बात सुही खासो फर्क आयो है, और कृषि क्षेत्र मैंने 4 गुना बढ़ोतरी देखी जी है, पर जनसंख्या जकी है बा कई गुना बड़ी है। इन वास्ते जरूरी हो गयो की बढ़ती हुई जनसंख्या री खाद्य आपूर्ति पूरी करने वास्ते जकी कृषि भूमि है बीर मायने ही ज्यादा ज्यादा उपज बढ़ावा और सागे सागे लागत में कमी करा, क्योंकि बचत भी एक तरह री आमदनी है। हरित क्रांति रे सागे सागे ही फसला रो उत्पादन तो बढ़ाने पर ध्यान दे जियो, सागे सागे लागत में कमी करने वास्ते भी ध्यान दे जियो। आधुनिक जो को कृषि वैज्ञानिक युग है, इर मायने आर्थिक और सामाजिक रूप से जगह पिछड़ा किसान है, बियरी आय रे मायने बढ़ोतरी करने वास्ते माने पूंजी री जरूरत है जकी बिया रखने कोनी, लेकिन लागत रे मायने कमी जकी है हर तरह रे खेत रे मायने करी जा सके। और इर वास्ते सबसे पहले जरूरी है के कई छोटी मोटी बात है बी पर ध्यान दियो जावे, ज्या की खेत री तैयारी करते वक्त वो ध्यान रखनो है कि खेत ने सही तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से तैयार करा। खेत रे मैंने गर्मी री जुताई और पलटाई जगह है खासो योगदान रखे, क्योंकि जमीन से 1 फुट नीचे मौजूद जकी कड़ी परत है बा टूट जावे, और इरे सागे सागे खेत रे मैंने मौजूद कीट और खरपतवार भी खत्म हो जावे, और मिट्टी रे मैंने पानी सोखने री क्षमता बढ़ जावे। आवनाले बगत रे मैंने जब बरसात होसी तो खेत रे मैंने पानी सोखने री क्षमता बनी उड़ी रहे, मिट्टी नरम हुए जने जड़ा रे विकास वास्ते भी पर्याप्त अवसर मिल जावे, और इस तरह से खेत रे मैंने आपा पानी जो को है संग्रहित कर सका और फसल रे वास्ते एक भूमिका तैयार कर सका है जैके सु एक मजबूत फसल बन सके। फसल अगे तिलो या पछे तिलो इर मैंने सुविधा देखनी है, लेकिन सामान्यतः किसान जगह है फसल री बुआई मानसून शुरू होने रे बगत क्रिया करें। इर मैंने वो ध्यान रखना है कि बीज रो चुनाव, उर्वरक रो प्रबंधन और बुआई ई बगत अगर आपा थोड़ी सावचेती रखा तो खेत री लागत रे मैंने कमी करी जा सके। अगेती बुआई सु ओ फायदो है कि बीमें कीट और बीमारियां कम लागे और पैदावार भी चोखी आ जाए, और बीसू खेत रे मैंने कीट और बीमारियां कम लागने से लागत रे मैंने कमी आवे। इर अलावा पौधा री सही तादाद काम में लेने जरूरी है, बीज जको आपने बताउड़े सिफारिश करोड़ो बीती मात्रा में काम लेना है। अगर घणो बीज ले सा तो फालतू खर्चो होसी, और इर अलावा घना बीज होसी तो बियाने बढ़ावार मौको कोनी मिले और बियाने मैंने पैदावार कमी हो जैसी, तो जितनी सिफारिश है बिता ही बीज आपने काम में लेना है। पौधा हर महीने एक उपापचय क्रिया व्यक रहे बीर वास्ते भी जरूरी है के पौधे सु पौधे रे बीच में और क्यारी सु क्यारी री दूरी जगी है बा बीती जो है जीती सिफारिश करूड़ी है। खरपतवार नियंत्रण वास्ते भी उपाय रखना चीज है, कीट और बीमारियां साके साके खरपतवार समय समय सारो हाथों अगर उखाड़ तरह तो घणो पैसो कौन लागे, और बीर अलावा अपर निगरानी में भी सगड़ो खेत रहे। रसायन जट तक हो सके जैव उर्वरक काम में लेना चीज है, प्राकृतिक उर्वरक काम में लेना चीज है, गोबर री खाद काम में लेना चीज है, सदरा अवशेष जको है इया सु जीव खाद बनार आपने बा काम में लेनी चीज है, इसु बचत हुसी और सागे सागे उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जैसी। सह फसली खेती भी काम में ली जा सके, एक तय समय में थे दो या दो से ज्यादा फसल एक के साथ उगा लो तो जोखिम री संभावना कम हो जाए, एक फसल में अगर कोई कारण मौसम री मार पड़ जाए तो दूसरी फसल आपने पैदावार दे दे। सागे सागे अगर किसान भाई रे संभव हुए तो फल और सब्जी री खेती भी काम में ली जा सके, सागे एक एक मशरूम उत्पादन कर लो, मुर्गी उत्पादन कर लो ऐसा हो सके, बकरी पालन कर सको, या दूसरे शब्द में कहा तो समेकित खेती करनी चाहिए कि खेत रे साथे पशुपालन हुए तो भी सुभी आय बढ़ोतरी हो जावे, आपस रे मैंने खर्चा बच जावे, और एक जगह रा जका बचोड़ा उत्पाद है।

0: अच्छे से क्या काम में लाग जाए, जहाँ की पशु पालन छू अगर गोबर हुए बकरी री मींगनी आवे तो वह खाद रूप में काम में आ जाए, और पशु अवशेष रसा के सके जगह छोटी मोटे घास फूस बचे वो पशु हमारे चारे रूप में काम में आ जाए, तो इसमें अपने चारों भी को नहीं खरीदना पड़े और खादरा पैसा भी देना कौन पड़े, दोनों खनी बचत होगी। और सागे सागे और जरूरी है के बीमा करावड़ी राखो खेतरी के अगर काल ने अगर मौसम पलट गयो प्राकृतिक आपदा आ गई तो जकी फसल है बिरी रक्षा कर सका और आपारे आमदनी जकी है बा गारंटेड मिल जावे।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा की वार्ता, खेत की लागत कैसे कम करें। लीजिए अब सुनिए सतीश देहरा का गाया हुआ ये लोक भजन।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केंद्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुंभाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भंडारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षी अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा गठबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण

0: सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त विश्वशर्मणे नूतनमन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहणसमारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सामहाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपाध्यक्षः नितिननवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हितेंद्र व्यास का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये आज की सुबह, ये सुबह की लालिमा सिर्फ सूरज के निकलने से नहीं होती, बल्कि सुबह तब होती है जब हम अपनी सोच में एक नया उजाला लेकर आते हैं। हम अक्सर अपनी पुरानी परेशानियों की गठरी को साथ लेकर चलते हैं, पर आपसे एक छोटा सा सवाल कि जब आप घर की सफाई करते हैं तो कूड़ा करकट सब बाहर फेंकते हैं ना, तो फिर मन से ये जो हमारे अंदर पुराने दुख और नकारात्मकता का कूड़ा है तो फिर उसे क्यों जमा रखना। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, बल्कि ये है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ न कुछ अच्छा हम ढूंढेंगे या ढूंढ ही लेंगे। याद रखें, एक छोटा सा पॉजिटिव विचार हमारे पूरे दिन की दिशा को बदल सकता है। जैसे दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही एक उम्मीद भरी सोच हमारी मुश्किल को छोटा कर देती है। तो साथियों, आज हम जब अपने काम के लिए घर से बाहर निकलें तो जेब में हल्की सी मुस्कुराहट और मन में ढेर सारा हौसला लेकर निकलिएगा। किसी को बिना वजह गुड मॉर्निंग बोलकर देखिए, किसी की मदद करके देखिए, यकीन मानिए वो सारा सुकून का जो आनंद है, सुकून है, दिल को हमारे ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा। आज के दिन को एक कोरे कागज की तरह देखिए और इस पर अपनी मेहनत और खुशियों के रंग भर दीजिए।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

साथियों, शुरुआत में हमने बात करी सुबह की ताजगी और सकारात्मक सोच की, लेकिन इस सोच के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना ही आवश्यक है। जी हाँ, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए थे कि पहला सुख निरोगी काया, और जब सेहत की बात आती है तो योग से बेहतर साथी कोई और नहीं हो सकता। योग और आज की भागदौड़, ये जो जिंदगी है जहाँ हम हमेशा किसी न किसी एक अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, जहाँ हमारा शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, योग कोई कसरत नहीं जिसे आप सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के लिए करें, बल्कि योग तो खुद से जुड़ने का एक रास्ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हितु भाई यार समय नहीं मिलता, तो यकीन मानिए अगर दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 20 मिनट खुद को दे देते हैं तो फिर हमारा जीवन बदल सकता है। फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? योग का मतलब सिर्फ कठिन आसन करना नहीं, बल्कि अपनी सांसों पर ध्यान देना है। गहरी सांस लेना और मन को शांत करना भी योग है। सोचिए, सुबह की इस ताजी हवा में जब हम घास पर नंगे पैर चलते हैं और गहरी सांस लेते हुए प्राणायाम करते हैं, तो मानो इस पूरी कुदरत की सारी ऊर्जा, ऐसा लगता है, हमारे भीतर समा जाती है। योग हमें अनुशासन सिखाता है और धैर्य भी सिखाता है। जो शांति हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, वो हमारे खुद के भीतर ध्यान में मिलती है, योग में मिलती है। तो साथियों, आज से एक नई शुरुआत। जिम जाना या भारी वजन उठाना सबके बस की बात नहीं हो सकती, लेकिन योग तो हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो घर की महिलाएं हो या घर से बाहर दफ्तर और काम के लिए जाने वाला युवा हो, और अलावा इसके हमारे आदरणीय बुजुर्ग हो, सभी योग कर सकते हैं। याद रखिए, जो करेगा योग वही रहेगा निरोग। मन तन चंगा होगा तो मन में सकारात्मकता अपने आप दौड़ी चली आएगी। तो चलिए, सांसों की लय को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए ये गीत।

साथियों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में कुछ और वजह से भी बहुत खास है। जी हां, आज आसफ अली जयंती है और साथ ही शहादत हसन मंटो जयंती भी है। पहले बात करते हैं आसफ अली जी के बारे में। एक ऐसा नाम जिन्होंने न केवल आज़ादी की लड़ाई लड़ी बल्कि कानून की बारीकियों से भी देश की सेवा की। उन्हें याद करते ही उस दौर की याद आती है जब देश का हर कोना इनकलाब के नारों से गूंज रहा था। आपको बता दूं कि आसफ अली जी वही शख्सियत थे जिन्होंने साल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का केस अदालत में लड़ा था। आप सोचिए, उस दौर में जब अंग्रेजों का खौफ हुआ करता था तब उन्होंने निडर होकर क्रांतिकारियों का पक्ष लिया। सिर्फ वकालत ही नहीं, आसफ अली जी सक्रिय रूप से सड़कों पर भी उतरे। चाहे असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, वो हर कदम पर बापू के साथ रहे और कई बार जेल भी गए। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजाद भारत में अमेरिका में भारत के पहले राजदूत बने और बाद में वो कई राज्यों के राज्यपाल बने। साथियों,

0: ऐसे महान शख्सियत की जयंती पर उन्हें नमन। उनकी पूरी जीवन को हम देखते हैं तो हमें एक सीख मिलती है कि हम चाहे किसी भी पेशे में हों, चाहे वकील हों, डॉक्टर हो या कोई साधारण कर्मचारी, अगर मन में देश के प्रति सच्ची निष्ठा है और हम कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं देश को ध्यान में रखते हुए, तो फिर इतिहास में हमारा नाम भी हो सकता है। साथियों, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हुए होते हैं जो समाज की बुराइयों और इंसानियत के दर्द को समझते हैं और वो एक तरीके से उनको कागज पर उतारते हैं। ऐसे लोगों में से एक शख्सियत बेबाक, निडर कहानीकार, जिनका नाम सुनते ही अदब की दुनिया में एक हलचल सी मच जाती है। जी हां, शहादत हसन मंटो। ये नाम नहीं, अपने आप में एक दौर है। 11 मई 1912 को जन्म लेने वाले मंटो ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। कोई सजावटी बातें नहीं, समाज की कड़वी हकीकत को बिना किसी पर्दे, बिना किसी ओट, बिना किसी छिपावट के सबके सामने रख दिया। कुछ लोगों को मंटो की कहानियां नहीं जमती, बुरी लगती है, लेकिन मंटो साहब कहते हैं जो समाज में होगा वही मुझसे लिखा जाएगा। मंटो की कहानियां जैसे टोबा टेक्सिंग, खोल दो, ठंडा गोश्त, सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि बंटवारे के उस दर्द की चीखें हैं जो आज भी सुनाई देती हैं। उन्होंने इंसानी फितरत के उन कोनों को टटोला जहां दूसरे लेखक जाने से डरते थे। उन्होंने आम आदमी, मजदूर, समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को अपना नायक बनाया। मंटो का अंदाज बिल्कुल साफ था। वो कहते थे कि लेखक समाज का आईना होता है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उनकी कहानियों में जितनी कड़वाहट थी उतनी गहरी संवेदना और मोहब्बत भी छिपी थी। आज हमारे भारत के ये दो हीरे आसफ अली और शहादत हसन मंटो, इनको सलाम।
1: नफरत

कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना। आज का सुप्रभात कार्यक्रम आपके सेवा में हितेंद्र व्यास ने प्रस्तुत किया। अब आज्ञा दें, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

अभी आपने सुना आशा भोसले और शब्बीर कुमार का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम था सोहनी महिवाल। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है कभी कभी।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम था मिली। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है रजनीगंधा।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुझो में आमने सामने होंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री, सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस

0: नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कलेश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंड

0: ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112331041, 0112371717, 0112371716। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 101.6 MHz पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्री गुलाम मोइनुद्दीन माहिर की उर्दू और हिंदी में काव्य पाठ।
1: गजल का मतलब पेश करता हूं, मुलाहिजा करें। किसकी चाहत में क्या खबर तन्हा, किसकी चाहत

गजल का मतलब मुलाहिजा करें, नई गजल पेश कर रहा हूं। किसकी चाहत में क्या खबर तन्हा, किसकी

फिर रही है इधर उधर तन्हा। शेर मुलायदा करें, जब तेरा अक्स ही नहीं हमरा, जब तेरा अक्स ही नहीं हमरा, अब कटेगा तो क्या सफर तन्हा। अब कटेगा जब तेरी याद ही जब तेरा अक्स ही नहीं हमरा, अब कटेगा तो क्या सफर तन्हा। अगला शेर मुलाहिदा करें, दब नहीं सकता वक्त के हाथों, दब नहीं सकता वक्त के हाथों, एक फनकार का हुनर तन्हा, एक फनकार का हुनर तन्हा। जाने इंसान है खा रहा कब से। इस गजल का आखिरी शेर मुलाहिदा करें, जाने इंसान है खा रहा कब से, जिसमें इंसान को नोच कर तन्हा, जिसमें इंसान जाने इंसान है खा रहा कब से, जिसमें इंसान को नोच कर तन्हा, किसकी चाह।

में क्या खबर तन्हा, मैं रहा गुम सा उम्र भर तन्हा। दूसरी गजल मुलाहिज़ा करें, मतलब पेश करता हूँ खास तौर से, नई गजल है।

ना रही वो आप से मिलने की आरज़ू, क्यों दिन वो इंतजार के खामोश।

गए। हासिले गजल शेर मुलायदा करें। अब तक तो साथ साथ थे मेरे, ये क्या हुआ? अब तक तो साथ साथ थे मेरे, ये क्या हुआ? क्यों का

काफिले, अब तक तो साथ साथ थे मेरे, ये क्या हुआ? क्यों काफिले बाहर के खामोश हो गए? शेर मुलाहिजा करे, आसीले गजल है। जिंदा था जिनके दम से मेरा साज़े ज़िंदगी, जिंदा था जिनके दम से मेरा साज़े ज़िंदगी, क्यों तार उस सितार के खामोश हो गए? क्यों तारुस सितार? मक्ता मुलाहिजा करे।

था हमको पासे मोहब्बत इसी।

शेर मुलायजा करे, ये क्या हुआ ये किस की, मुलायजा करे हजरत, ये क्या हुआ ये किस

नजर खा गई तुझे, ये क्या हुआ, ये किसकी नजर खा गई तुझे, क्यों दिन तेरे सिंगार के खामोश हो गए।

सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री गुलाम मोइनुद्दीन माहिर का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित समाचार तरंग।

नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में आप सभी का स्वागत।

0: श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ सालेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश के समग्र विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ये है जनगणना, यानी आबादी की गिनती। लेकिन जनगणना सिर्फ आंकड़ों का संकलन नहीं और महज आबादी की गिनती नहीं, वरन ये हमारे समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है। जनगणना प्रक्रिया 2027 से जुड़े खास पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान के जनगणना निदेशक श्रीमान विष्णु चरण मलिक जी। नमस्कार सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, भारत में जनगणना का वैधानिक आधार क्या है और ये प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
1: जनगणना लोगों की केवल गणना नहीं है, ये पूरे समाज एक देश की तस्वीर हमारे सामने रखती है
0: जी।
1: देश के नीति निर्धारण में पूरी तरह से सहायक होता है, जैसे बहुत सारे अन्य जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, चाहे आप चुनाव की बात करें, डिलिमिटेशन की बात करें, और ना केवल सरकारी प्रयोग में ये लाया जाता है जो जनगणना के डाटा है, उसके साथ साथ जो हमारे जितने कॉरपोरेट सेक्टर हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी यूज करते हैं, और शोधकर्ताएँ जो हैं वो भी इसका यूज करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, हर कोई जनगणना के डाटा को, ये क्योंकि एक ऑथेंटिक डाटा है पूरे देश का, इसका पूरी तरह से हर कोई उपयोग में लेता है।
0: सर, जनगणना में गिनती के अलावा कौन कौन सी जानकारी इकट्ठा की जाती है और क्या ये संभव है कि सारी सूचनाएं एक ही बार में ले ली जाए?
1: जनगणना हम लोग दो चरणों में करते हैं, ठीक है। पहला चरण जो अभी अपन करने जा रहे हैं वो है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना
0: जी।
1: ये प्रथम चरण क्या है, ये मकानों के बारे में जानकारी हम लोग जुटाते हैं। ये द्वितीय चरण जिसको अपन जनगणना बोलते हैं, पॉपुलेशन एनुमरेशन बोलते हैं, ये उसके लिए ये जो एक आधार बनता है, ठीक है। पॉपुलेशन एनुमरेशन में हम जो लोगों के व्यक्तिगत जानकारी है, व्यक्तिगत मतलब ऐसे एज, जेंडर, एजुकेशन स्टेटस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, इन जानकारियों को हम लोग जुटाते हैं सेकेंड फेज में।
0: सर, इस बार की जो जनगणना है, यानी जनगणना 2027, वो पहली बार डिजिटल माध्यम से हो रही है, तो इसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं और इसके प्रशिक्षण और प्री टेस्ट के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: आपने सही कहा, ये प्रथम बार पूरे भारत में डिजिटल जनगणना के रूप में इसको किया जा रहा है। और डिजिटल जनगणना की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि डिजिटल मोड में ये किया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी जनगणना की जो प्रक्रिया है एक CMMS पोर्टल है, उसी पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। जनगणना करने वाले जो भी फंक्शनरीज है, चाहे प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, चार्ज अधिकारी, सबके वहाँ रजिस्ट्रेशन होना, सबके ID कार्ड जनरेट होना, सबके ट्रेनिंग होना, बैच बनाना, सबके अनरारियम का पेमेंट करना, वो सारा काम डिजिटल मोड में होगा। और क्या विशेषता है, मोबाइल जो स्मार्टफोन है उसमें एक HLO ऐप, जैसे फर्स्ट फेज को अपन HLO ऐप बोलेंगे, सेकेंड फेज में PE ऐप बोलेंगे, एप्लीकेशन से, तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस का जो एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा, जो प्रगणक है, जो एनुमरेटर है, वो घर घर जाकर वो डेटा एकत्रित करेंगे। उससे पहले और एक महत्वपूर्ण गतिविधि अपन ने शुरू कर दी है, वो है स्वगणना, कि हर नागरिक को पहली बार एक अवसर दिया गया है कि वो अपनी गणना डिजिटल मोड में पोर्टल में जाके वो कर सकता है।
0: यानी जब व्यक्ति अपना विवरण दर्ज करवाएगा तो उसे एक आईडी प्राप्त होगी।
1: तो वो जो स्वगणना पोर्टल है वो है scse.census.gov.in। ये पोर्टल सही तरीके से हमें टाइप करना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। और पहली बार जब अपन लॉगिन करते हैं तो एक वो मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं, क्योंकि स्वगणना या जनगणना के जो प्रथम चरण है ये मकान के गणना है, तो इसलिए

0: किसान या हाउस होल्ड या परिवार के जो मुखिया के नाम से ये जनगणना होगी। मोबाइल अपन दर्ज करेंगे तो उसमें एक पहली बार ओटीपी आएगा
1: जी।
0: ओटीपी आने के बाद ही वो पोर्टल खोलता है, फिर एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद वो पूरा खुल जाएगा।
1: यानी परिवार का कोई भी सदस्य पूरे परिवार का ब्यौरा भर सकता है, लेकिन वो मुखिया के नाम से ही दर्ज होगा और उसी के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी की।
0: ये प्रथम चरण में उसमें 33 प्रकार के सवाल है, और 33 प्रकार के सवाल को हम किस तरह से तीन कैटेगरी में अपन विभाजन कर सकते हैं। घरों में जब अपन रहते हैं तो किस तरह के घर में अपन रहते हैं, जो घर का जो निर्माण का जो प्रकार है तो निर्माण की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि छत किस मटेरियल से बनी है, फर्श किस मटेरियल के, दीवार किस चीज़ की है, पक्का मकान है, कच्चा मकान है, इसके बारे में। उसके बाद सुविधाओं के बारे में, मकान में अगर कोई रहता है कि सामान्य जीवन जीने के लिए उसके साथ उसके पास इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, पीने के पानी होना जरूरी है, स्नान घर होना जरूरी है, गैस सिलेंडर होना जरूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तीसरा सवाल है और सामान्य जीवन अपन जीने के लिए जैसे तीन तरह की चीज़ें अपन आवश्यकताएँ की बात करें, जैसे अपन दूर दराज लोगों से बात करने के लिए हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन या मोबाइल फोन नंबर भी होना, मोबाइल फ़ोन होना भी ज़रूरी होता है। जाने आने के लिए हमारे पास कोई भी कोई साधन होना होता है, चाहे साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, किसी भी तरह से, इस तरह के सवाल पूछा जाता है। इवन दूरदर्शन या अपन जब बात करते हैं कि भाई न्यूज़ वगैरह देखने के लिए टीवी हो या मनोरंजन के लिए टीवी हो, उसके बारे में पूछा जाता है। ये इसको परिसंपत्ति अपन बोलते हैं, अन्य किसी तरह के कोई विवरण अपन नहीं लेते।
1: सर एक जिज्ञासा है हमारी कि अगर संयुक्त संपत्ति है तो जिसके तीन चार स्वामी है या एक संयुक्त परिवार है तो किसके नाम से फिर एंट्री दर्ज की जाएगी?
0: नहीं, घर के जो मुखिया है उनके नाम में परिवार का ब्यौरा लिखा जाता है, क्योंकि ये घर के बारे में अपन पूछ रहे हैं, व्यक्ति के बारे में कोई पूछे नहीं है, कोई संपत्ति के बारे में नहीं पूछ रहे। घर में क्या सुविधाएं उपलब्ध है उसकी बात हो रही है, संपत्ति चाहे किसी के नाम भी हो।
1: जी सर, जनगणना में क्या सभी सवालों का जवाब देना अनिवार्य है?
0: जी, क्योंकि सवाल इतने कठिन नहीं है, सारे सरल सवाल हैं, और हाँ या नहीं में तो नहीं होता, क्योंकि हर सवाल का जवाब ड्रॉप डाउन मोड में आ जाता है। ठीक है, कोई घर में रहता है तो पक्का घर होगा, आंशिक रूप से पक्का होगा, कच्चा मकान होगा, उसके सवाल में कोई किसी भी तरह जवाब देने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
1: अगर किसी को सवालों के जवाब देने में या साझा करने में कोई जानकारी संकोच है तो क्या प्रगणक द्वारा उनकी समझाइश भी की जाती है?
0: प्रगणक द्वारा ऑब्वियसली समझाइश की जाएगी, क्योंकि हम लोग स्वगणना की बात कर रहे हैं। स्वगणना एक, क्योंकि एक वॉलंटरी एक्ट है और हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि आप जब खुद जानकारी देंगे तो आप अपने हिसाब से देंगे और आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी देना अनिवार्य है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और वैधानिक जिम्मेदारी भी है हर नागरिक के लिए।
1: सर, अपने राजस्थान में 15 मई के बाद से प्रगणक घर घर आएंगे और ये 14 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी, तो क्या इस दौरान एन्यूमरेटर को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत पड़ेगी?
0: मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से, सभी नागरिक के, राजस्थान के नागरिकों से, कि जब प्रगणक आते हैं प्रगणक खुद अपने आईडी पहन के आएंगे, जो सेंसस कमिश्नर द्वारा, सेंसस विभाग द्वारा आईडी कार्ड उनको उपलब्ध होता है, जो आईडी में वो क्यूआर कोड भी होगा, कोई भी नागरिक उसको क्यूआर कोड को भी वो ये करके देख
1: कर
0: स्कैन करके वो देख सकते हैं, उसके वेरासिटी को पूरी तरह से वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रगणक वहाँ के स्थानीय ज़्यादातर टीचर होंगे, जो मोर और लेस जो वहाँ के नागरिक उनको जानते होंगे, उनके बच्चे पढ़े होंगे या वो खुद ही उन्होंने पढ़ाई की होगी उनके साथ या उनके अंडर, तो इसलिए किसी भी तरह से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: यानी प्रगणक और पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति है वो मुख्य रूप से शिक्षक वर्ग की
0: होंगी और स्थानीय शिक्षक वर्ग के होंगे। जहाँ तक दस्तावेज की बात है, मैं निवेदन करूँ किसी भी तरह से कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैडम, कि हम लोग जब ये जो जानकारियाँ जब जुटाते हैं, व्यक्तिगत या हाउस होल्ड जानकारियाँ होती है, परंतु अपन जब इसको स्टैटिस्टिकल मोड में रखते हैं डेटा के रूप में, वो एक ग्रामीण या तहसील, जिला, राज्य स्तरीय डेटा में या नेशनल स्तरीय डेटाबेस में रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, मान लीजिए पूछा गया कि ऐसे मैंने किसके घर में मोबाइल है, किसके घर में लैंडलाइन है, ठीक है, अब उसको डेटा को कैसे किया जाएगा, जैसे उदयपुर ज़िले में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास मोबाइल टेलीफोन नहीं है या लैंडलाइन टेलीफोन नहीं है, उसी हिसाब से डेटा आता है। ऐसा नहीं आएगा कि विष्णु मल्लिक के घर पास मोबाइल है या नहीं, वो जानकारी किसी भी दर ना किसी को पता नहीं होता।

0: ना, विष्णु मल्लिक को कभी पता चलेगा ना, किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, किसी विभाग को, किसी भी तरह से को, जो व्यक्तिगत या हाउस होल्ड डेटा जो है वो किसी को कभी भी पता नहीं होता,
1: कोई शेयर नहीं किया जाता। व्यक्तिगत जानकारी जो है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। 100%
0: धारा 15 सेंसस एक्ट जो है यही गोपनीयता के ऊपर बार बार जोर देता है कि हर जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, हाउस होल्ड डेटा, हर तरह की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
1: सर, एक सामान्य नागरिक में बहुत सामान्य सी जिज्ञासा होती है कि अगर मैं जनगणना प्रक्रिया में भाग लूंगा या लूंगी तो उसके बाद मुझे सरकार की कौन सी योजनाओं का फायदा मिलने वाला है, या अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कौन सी योजनाओं से नाम कट सकता है?
0: जहां तक योजनाओं के फायदा या नाम कटने की बात है, जनगणना में जिम्मेदारी माने भाग लेना, नहीं भाग लेने के साथ किसी भी तरह से कोई ताल्लुकात या किसी भी तरह से कोई रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं है।
1: सर, राजस्थान की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से भी, और विविधता की दृष्टि से भी बात करें तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र हैं। ऐसे में जनगणना के दौरान बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए क्या तैयारियां की गई है?
0: मैं निवेदन करूँ, राजस्थान में 51 प्रमुख जनगणना अधिकारी हैं, जो 41 जिला कलेक्टर और 10 नगर निगम के आयुक्त भी हैं, ठीक है। फिर 759 हैं जो चार्ज अधिकारी। चार्ज अधिकारी कौन है? रूरल एरिया में जो चार्ज अधिकारी होते हैं तहसीलदार हैं, अर्बन एरिया में जो यू नगर पालिका या कमिश्नर नगर परिषद होते हैं वो होते हैं, तो वो 759 हैं। उन चार्ज अधिकारी के अंडर प्रगणक और सुपरवाइजर जिनकी संख्या है 1,33,000, तो ये 1,33,000 प्रगणक और सुपरवाइजर काम करेंगे। प्रगणक के अधीन में क्या आता है? प्रगणक के अधीन एक HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आता है, मकान सूचीकरण ब्लॉक आता है। एक मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या होता है कि 800 करीब आबादी या 150 से 200 मकान जिसमें होते हैं, तो उसका एक ब्लॉक बनता है, उसी ब्लॉक का जो मुखिया होता है, वो प्रगणक होता है, और 6 प्रगणकों में एक सुपरवाइजर होता है जिसका काम है सुपरविजन करना, पूरी तरह से नियमित रूप से उनके मॉनिटरिंग करना। तो उसी हिसाब से इसको किया गया है। गर्मी का दिन है तो गर्मी से निपटने के लिए भी पूरी तरह से इंतजाम किया गया, राज्य सरकार के तरफ से हर तरह के सहयोग भी मिल रहा है, हर तरह के डायरेक्शंस वगैरह नीचे जारी किए जा रहे हैं कि जो 12 बजे से लेकर 3 बजे जो प्रगणकों को मना किया जाता है कि आप उस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, उस समय मत जाइए, और कैप वगैरह पहने, हाइड्रेशन पूरी तरह से रखें, और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था कलेक्टरों द्वारा भी की गई है। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह कोई दिक्कत होगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह के इंतजाम, हर तरह की तैयारी हमारे तरफ से पूर्ण कर ली गई है।
1: सर, अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप आम जन की जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या आप उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जरूर जरूर, मुझे ये अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं सभी नागरिकों से यही निवेदन करना चाहूँगा, जनगणना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के बाद जो डेटा आते हैं उस डेटा के आधार पर हर तरह की योजनाएं, हर तरह के कार्यक्रम, प्रशासनिक प्रक्रियाएं वगैरह होती है, बजट का आवंटन होता है, सारा कुछ होता है, और इसमें आपके दिए गए जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और जानकारी का एक जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसी का ही केवल यूज़ किया जाता है, कोई व्यक्तिगत, कोई पारिवारिक जानकारी का किसी भी तरह से कोई यूज़ या किसी भी तरह से कोई शेयर किसी के साथ नहीं किया जाता है, और इसको अपना दायित्व, अपने राष्ट्रीय दायित्व और वैधानिक दायित्व समझते हुए आप आगे बढ़ें, इसमें भागीदारी निभाएं, स्वगणना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, क्योंकि 15 तारीख तक हम लोग स्वगणना करने जा रहे हैं, बाद में 16 मई से 14 जून तक जब प्रगणक आपके घर में आएंगे, कृपया आप उनके पूरी तरह से सहयोग दीजिए, और हर तरह के जो सवाल करेंगे, जो 33 सवाल करेंगे जो ऑलरेडी अधिसूचित है, उन सवालों का आप जवाब बेफिक्र होकर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मलिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इस बातचीत से सभी श्रोताओं को जनगणना के महत्व, प्रक्रिया और उसमें अपनी भागीदारी के प्रति जागरूकता मिली होगी। आपको बता दें, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा सुप्रियो बनर्जी, रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन माधुरी वशिष्ठ, प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र

0: से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही के सालों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी रखा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में रखा गया है। इस दौरान महाआरती होगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शर्मा कल अजमेर जिले के पुष्कर के कडेल गांव में ग्राम विकास चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल से जल, जनधन खातों और उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है।
2: युवा, किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उड़ता है, गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर के हम चलते। पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती, ईंधन गीला हो जाता था, भूख देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया तो हमारे

0: प्रधानमंत्री जी ने दी
1: और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
2: ग्राम विकास चौपाल में श्री शर्मा ने किसानों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री ने आज सुबह कडेल गांव में पैदल भ्रमण कर बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर में कल से बंदी समाप्त हो गई। बीती रात 12 बजे के बाद से अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के पास पानी प्रवाहित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कारण पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलस

0: बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में प्रचंड लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
1: सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में मूक पक्षियों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: जोधपुर और बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। प्रदेश के 19 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हीट वेव की प्रबल संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रहेंगी। साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3-4 दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज सुबह मौसम अचानक बदला और कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलता से बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलगाड़ियों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मिडिल बर्थ खोलने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे नियमों के तहत सुबह 6 बजे बाद बीच की बर्थ फोल्ड करना अनिवार्य है, जिससे निचली बर्थ पर यात्री आसानी से बैठ सके। उन्होंने बताया कि अपर बर्थ के यात्री पूरे दिन बर्थ का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज। प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 और 28 सेकंड हुए हैं। लिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दीपाली के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आपने सुना दीपाली और सतीश देहरा का गाया हुआ ये लोकगीत। आज का लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1281वां अंक।

0: प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका नूर नमन सिमरत गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखते हैं।
1: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी जीना तमान इदरीसी नाजिया शाजिया भाई मोहम्मद नादिर मोहम्मद साजिद छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
1: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए,
1: जी
0: हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए।
1: जी
0: तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों मिट्टियों पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
1: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride?

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार।

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We like it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
6: वो तो ठीक है साहब,
5: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
6: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
5: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।

0: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डरकर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई।

0: जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
2: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
2: नाथू सिंह निशाना साधो।
3: यस सर। दाही ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
3: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
4: जी।
2: फायर।
3: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है।

0: क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्ध भूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1281वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म का नाम है ईमानदार।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
3: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
2: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

साथ, और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी।

0: बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: अलका याग्निक, उदित नारायण, साबरी बंधु और साथियों को सुनिए। फिल्म का नाम है परदेश।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक को सुनिए, फिल्म का नाम है बाजीगर।

0: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
1: किया।
0: कभी किसी को दिल दिया?
1: किया।
0: मैंने भी दिया।
2: इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है कर्ज, गाया है किशोर कुमार ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का ये गीत। इस गीत को गाया है अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

0: वे साय तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रभास पाटन सोमनाथ गुजरात में स्थित सोमनाथ के पुनरुत्थान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अमृत पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाग लेने और उपस्थित जनता को संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
2: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
3: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घृष्मेशं च शिवाले। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The

0: temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
1: Namaskar. Aap sabhi ko aaj ke is vishesh mahotsav ki bahut bahut shubhkamnaen. जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
2: जी,
1: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्तुति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें

0: आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है।
1: जी,
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द हिस्टोरिक सोमनाथ तीर्थ व्हिच इज द फर्स्ट ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, एंड टुडे The 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parva, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है, साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. Manaha Shiva Sankalpa Mastu Sumukhascha Ekadanda.

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्च।

0: विष्णुरा विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या हैं? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो

0: रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply, the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate, and on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारे समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early, we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणवक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्प उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहाँ हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब

0: अब सही समय है, उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस द होप दैट द टेम्पल विल लिव इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ही ऑल्सो सेड that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream, but taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade, and as you mentioned that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है

0: कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें, और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का कार्यक्रम विवरण। दिन में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। चर्चा का विषय रहेगा समकालीन महिला कवियत्रियों की रचनाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षित निवेश के तरीके, आसफ अली जयंती, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का साहस, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, रसोई से व्यंजन बनाने की विधि और कुछ ब्यूटी टिप्स के साथ सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा संपूर्ण पोषण की आवश्यकता, साथ ही दी जाएगी लघु जानकारी आसफ अली जयंती, विटामिन डी, WTO, रोजगार समाचार के साथ होगा क्विज टाइम और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे एक ही गीतकार से कुछ फिल्मी नगमे। संध्या 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा का विषय रहेगा कपास की बुआई का उचित समय, राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री, कौशल विकास योजना, जल ही जीवन है, साथ ही मौसम की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी के साथ सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा संध्या 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। पुरानी फिल्मों से गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। खेल जगत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत गजलें।

कर 15 मिनट पर। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। पुरानी फिल्मों से गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। खेल जगत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत गजलें।

वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना ना भूलें। वाहन को सदा नियंत्रित गति से चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग कभी ना करें।

0: खबरों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना।

0: करता है, लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पर प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
0: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सह लोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग,

0: यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है। लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है
1: जी। कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग।

0: या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना जिसकी जैसी आवश्यकता उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
1: यस एंड वी आर ब्रिंगिंग टू यू द सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026 दैट इज बीन हेल्ड एट द सोमनाथ टेंपल एट प्रभास पाटन इन गुजरात एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैज ऑफर्ड प्रेयर्स एट द श्री सोमनाथ टेंपल एंड ही हैज ऑल्सो वॉच द स्पेशल air show the Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath temple and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: And the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कृष्ण धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर कि मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another

0: of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath corridor, the Sri Ambaji temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Sri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India. And the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp. And also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
1: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी. और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय होंगी.
0: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक. प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने. और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
0: द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल नाउ एड्रेस द गैदरिंग.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है. महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की यह आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है

जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं,

मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत

था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसका भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर

विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है।

राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है, इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इसे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की

इच्छा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं।

0: भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर

0: भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने सोमनाथ पर डाक टिकट जारी कर जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है। देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
1: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशोराय पाटन, गिरिराज जी, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
0: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के इस्तेमाल को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल के लिए विदेश भ्रमण ने का भी आग्रह किया है। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने और अत्यधिक सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने की बात कही। साथ ही लोगों से खाने के तेल के उपभोग में कमी लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। प्रधानमंत्री ने वोकल

0: और लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय वस्तुओं की खरीददारी पर जोर दिया। डीग जिले के जटेरी से अब आदि बद्री, खो, बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कल डीग के जटेरी गांव में आयोजित संध्या चौपाल में शिरकत की। उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि जटेरी को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बेढम ने कहा कि गांव से जुड़ा नया धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जटेरी और पंचरी में कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति पर दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमण और स्वास्थ्य जटिलताओं के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर नीलेश जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को हाई रिस्क वाला बता रही है। अब तक दोनों अस्पतालों में 4 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 4 अन्य प्रसूताएं किडनी खराब होने की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरिस्का में वन्य जीव अस्पताल और जांच केंद्र को मंजूरी दे दी है। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों का उपचार अब सरिस्का में ही हो सकेगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जल्दी ही अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। अभयारण्य में बाघ, बघेरों के अलावा सांभर और चीतल सहित करीब 20,000 वन्य जीव है। इनके बीमार और जख्मी होने की स्थिति में इन्हें स्थानीय स्तर पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:20 और ठीक 10 सेकंड हो चुके हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती गीता शर्मा और श्रीमती नेहा गोस्वामी।

0: नमस्कार सखियों, चेहरे पर मुस्कान, दिल में ढेर सारी खुशियां और नई ऊर्जा के साथ मैं नेहा गोस्वामी आज फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने जीवन के हर पल को पूरे उत्साह के साथ जी रही होंगी।
1: और मैं आपकी सखी गीता शर्मा भी आप सभी सखियों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। नई सुबह की ताजगी, सकारात्मक सोच और ढेर सारे जोश के साथ आज हम दोनों सखियां फिर से आपसे मिलने आई हैं, ताकि कुछ दिल की बातें, कुछ मुस्कुराहटें बटें और जीवन को बेहतर बनाने वाली कुछ सुंदर बातें साथ साथ साझा की जा सके।
0: गीता कहते हैं ना कि एक स्वस्थ इंसान जीवन को सिर्फ जीता नहीं बल्कि उसे पूरे उत्साह, उमंग और जिंदा दिली के साथ महसूस भी करता है।
1: बिल्कुल।
0: जब तन स्वस्थ होता है तो मन भी खिल उठता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी बहुत खास लगने लगती हैं। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को सबसे पीछे छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हो नेहा। और अगर ध्यान से देखें ना हम, तो अच्छे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मंत्र है थोड़ा सा नियंत्रण। जी हाँ सखियों, हमारी आदतों पर नियंत्रण, हमारे खान पान पर नियंत्रण, हमारी दिनचर्या पर हमारा नियंत्रण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन और हमारे विचारों पर नियंत्रण। क्योंकि सखियों, जहाँ पर नियंत्रण होता है ना, वहीं पर संतुलन आता है और जहाँ संतुलन आता है वहीं अच्छा स्वास्थ्य भी बसता है।
0: सखियों, आज हमारी छोटी छोटी गलत आदतें ही धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। सुबह आंख खुलते ही भगवान का नाम लेने के बजाय मोबाइल हाथ में आ जाता है। एक कप चाय के साथ घंटों

0: स्क्रीन देखते रहते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि ये आदत हमारे आंखों की रोशनी, मन की शांति और हमारे कीमती समय तीनों को प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम नेहा। और पता है हमारे खान पान का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हमारे शरीर को सही पोषण मिल भी पा रहा है या नहीं। हमारा शरीर हर दिन ना हमसे थोड़ा सा अनुशासन मांगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे लापरवाही दे देते हैं। और यही छोटी छोटी जो असावधानियां है ना, आगे चलकर बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती है।
0: और दिनचर्या भी तो कितनी अनियमित हो गई है ना गीता। कभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो कभी 10 बजे तक उठने के पते ही नहीं रहते। सोने जागने का कोई निश्चित समय नहीं रहता, जबकि हमारा शरीर भी एक सुंदर लय में काम करता है ना, और उसे नियमितता की जरूरत होती है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी नियमितता ले आए या नियंत्रण ले आए, जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, संतुलित भोजन करना और रोज थोड़ा चलना, तो शरीर भी हल्का महसूस करेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और इसी के साथ ना, अगर हम दिल से खुश रहते हैं ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी दवा होती है अच्छा स्वास्थ्य पाने की। क्योंकि जब हम ना भीतर से खुश होते हैं तो उसका असर सीधे हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। चेहरे पर मुस्कान सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाती है सखियों, बल्कि मन को भी हल्का और शरीर को भी ऊर्जावान बनाती है। इसलिए सकारात्मक सोच और खुश दिल स्वभाव को हमेशा अपने स्वभाव में लेकर के आइए, तभी हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत दे पाएगा।
0: इसी खुशी में स्वास्थ्य की भावना को हमने पिछले शुक्रवार को बहुत खूबसूरती से महसूस किया सखियों, जब आकाशवाणी परिवार की ओर से आयोजित वॉकाथन में हम सब ने मिलकर आकाशवाणी से जूनागढ़ तक साथ साथ कदम बढ़ाए। वो सिर्फ एक वॉक नहीं थी सखियों, वो स्वास्थ्य, उत्साह और एकता का सुंदर संदेश था। खुली हवा में सांस लेना, साथ चलना, हंसते हुए बातें करना और अपने शरीर को सक्रिय रखना सच में मन को भी एक नई ऊर्जा दे रहा था।
1: और पता है सबसे सुंदर बात क्या थी नेहा? वो थी कि हमारे सभी के चेहरे पर मुस्कान थी।
0: बिल्कुल।
1: और हर कदम में उत्साह था और हर दिल में सकारात्मकता थी। और उसी वक्त उन्होंने ना पता ये एहसास कराया कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ दवाइयां नहीं चाहिए, बल्कि खुश मिजाज माहौल, अच्छे रिश्ते और सकारात्मक सोच भी उतनी ही
0: जरूरी है। तो आइए सखियों, आज हम सब मिलकर खुद से एक छोटा सा वादा करें कि हम अपनी आदतों में नियंत्रण लाएंगे, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, अपने मन को खुश रखेंगे और अपने जीवन को संतुलन और सकारात्मकता से भर देंगे।
1: क्योंकि याद रखिए सखियों, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा सुख है और खुश मन ही सबसे बड़ी दौलत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नेहा, अभी हमने स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और वर्तमान को हम कैसे खुशहाल बनाएं, ये बात की है ना। तो चलो अब थोड़ा सा इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं। तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जैसे जैसे पीछे जाते हैं, तो हमें महिलाओं के अदम्य साहस से भरी हुई कहानियां हमारे देश के गौरव को बढ़ाती हुई नजर आती है ना?
4: बिल्कुल। और भारतीय वीरांगनाओं का जिक्र किए बिना 1857 से 1947 तक की स्वाधीनता की दास्तां अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि ये भारत की ही नारियां थी जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए। और पता है गीता, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस

0: में से अधिकतर किसी रजवाड़े में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि आम आदमी के यहाँ जन्म लेकर अपनी योग्यता की बदौलत बड़े मुकाम पर पहुंची थी।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और अगर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो नेहा दो बड़े नाम बड़े ही शान से लिए जाते हैं, और वो हैं बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और वहीं अगर हम इतिहास में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं ना, तो एक और नाम सुनने में आता है, और वो है नाम वर्ष 1824 में फिरंगियों भारत छोड़ो का बिगुल बजाने वाली कित्तूर की रानी चेनम्मा का, जिन्होंने रणचंडी का रूप धारण कर अपने अदम्य साहस और फौलादी संकल्प की बदौलत अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे।
0: और तुम्हें पता है गीता कि इन्हीं रानी चेनम्मा की मृत्यु के 6 साल बाद लक्ष्मीबाई जन्मी थी। और तो और बैरकपुर में मंगल पांडे की चर्बी वाले कारतूसों के बारे में सबसे पहले माता दीन ने बताया, और माता दीन को इसकी जानकारी उनकी पत्नी लज्जो ने दी थी। और लज्जो किसी अंग्रेज अफसर के यहाँ काम करती थी, जहाँ से उसे ये सुराग मिला था।
1: तो अगर नेहा हम कुल मिलाकर ये कहें कि 1857 की चिंगारी भड़काने और उसे हवा देने का काम भी नारी शक्ति ने ही किया था, और लक्ष्मीबाई ने तो पुरुषों के वस्त्र तक धारण कर ब्रिटिश शक्ति के खिलाफ युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व भी किया था, और घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य के किस्से तो जन जन ने सुने ही हैं, है ना?
0: बुंदेले घर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: बिल्कुल नेहा, और ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर देने के बाद में उन्होंने तांत्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन अंत में क्या हुआ, युद्ध हार कर भी रानी लक्ष्मीबाई एक तरह से जीत ही गई थी, है ना?
0: तभी जब वो वीरगति की को प्राप्त हुई थी ना, तब जनरल ह्यूग्रोज ने कहा था कि यहाँ वो भारत वो औरत सोई है जो विद्रोहियों से एकमात्र मर्द थी। ऐसे ही विजय लक्ष्मी, बिल्कुल सही बात है,
1: रानी लक्ष्मीबाई के लिए
0: ऐसे ही विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, लीलावती मुंशी, अर्णा आसफ अली, इंदिरा गांधी और न जाने कितनी ही असंख्य महिलाओं ने भारत के वर्तमान स्वरूप को बनाने में योगदान दिया, और हमें भी संकट की घड़ी में वीरता का प्रदर्शन का संदेश दिया।
1: बिल्कुल, वहीं अगर नेहा जब हमने स्त्रियों की इतनी बात की है, और अगर हम पुरुषों की बात करते हैं, तो उनकी तो गिनती ही करना असंभव होगा, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध भारतीय वकील और स्वतंत्रता सेनानी आसफ अली जी के बारे में। जी हाँ सखियों, आसफ अली जी का जन्म 11 मई 1988 को हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में, और उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके लंदन में चले गए, और वहाँ पर उन्होंने कानून की पढ़ाई की, और फिर भारत आकर उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया।
0: जब सेंट्रल असेंबली के हॉल में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ा गया, तो आसफ अली ही उनकी तरफ से वकील के रूप में प्रस्तुत हुए थे। आसफ अली शुरू से धार्मिक मतभेदों को दूर करने और सद्भावना को बढ़ाने के पक्षधर रहे।
1: और अगर बात करें हम आज़ादी के बाद की, तो अंतरिम सरकार के गठन के समय अगस्त 1946 में उन्हें रेल मंत्री के रूप में कार्य दिया गया, और दो बार उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी वो नियुक्त किए। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत के रूप में कार्य करने का मौका भी आसफ अली जी को मिला, और 1 अप्रैल सन 1953 को 64 वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में सेवा करने के दौरान आसफ अली जी वर्ण दूतावास कार्यालय में इनका निधन हो गया।
0: और सन 1989 में भारत डाक ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। तो क्यों ना गीता, हमारे इन देशभक्तों को जिस तरह से हमारी सरकार ने उपलब्धियां प्रदान की, तो हम भी उनकी शान में हमारी सखियों को ये देशभक्ति गीत से ओतप्रोत गीत सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: गीता कविता केवल शब्दों की सजावट नहीं होती, वो मन की धड़कनों का संगीत होती है। और जब कोई महिला कवित्री लिखती है तो उसके शब्दों में जीवन

0: इतने रंग उतर आते हैं कि सुनने वाला खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। आज की समकालीन महिला कवित्रियां सिर्फ प्रेम नहीं लिख रही, बल्कि स्त्री का आत्मसम्मान, उसके सपने, संघर्ष, रिश्ते और संवेदनाएं भी लिख रही हैं।
1: बिल्कुल नेहा, और यही कारण है कि आज की कविताएं केवल किताबों तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि लोगों के दिलों में बसने लगी हैं। जैसे कि अनामिका की कविताओं में स्त्री का मन बहुत गहराई से दिखाई देता है, गगन गिल की रचनाओं में एक शांत संवेदना बहती है, और कात्यायनी की कविताएं आत्मविश्वास और साहस से भरी हुई लगती हैं। और नई पीढ़ी में गार्गी मिश्र, प्रवेश सोनी, अंकिता आनंद जैसी कवित्रियां अपनी लेखनी से भावनाओं को नया स्वर दे रही हैं।
0: सच में, और इसके अलावा भी कई ऐसी कवित्रियां हैं जिनकी कविताएं मन के तारों को छू जाती हैं, जैसे निर्मला पुतुल, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी, अल्पना मिश्र, ज्योति चावला, ममता कालिया, सुनीता जैन और इला कुमारी जैसी कई कवित्रियां अपनी रचनाओं से साहित्य को नई संवेदनाएं दे रही हैं।
1: बिल्कुल नेहा, और कई कवित्रियों की सबसे सुंदर बात यह है कि उनकी कविताओं में हमें अपना ही जीवन दिखाई देता है। कभी ममता दिखती है माँ की, कभी रिश्तों की गर्माहट नजर आती है, कभी अकेलेपन की चुप्पी, तो कभी सपनों की उड़ान। जैसे युवा कवित्री गार्गी मिश्र की शैली से प्रेरित ये पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगी। मैंने अपने डर को धीरे धीरे शब्दों में बदल दिया है, मैंने अपने डर को धीरे धीरे शब्दों में बदल दिया है, अब मेरी खामोशी भी मेरी ताकत बन चुकी है। मैंने सीखा है आंधियों के बीच भी मुस्कुराना, मैंने सीखा है आंधियों के बीच भी मुस्कुराना, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। अब मैं किसी और की परछाई नहीं, मैं अपनी पहचान खुद लिखना चाहती हूँ। मेरे सपनों की उड़ान अब किसी इजाजत की मोहताज नहीं।
0: वाह, कितनी खूबसूरती से एक स्त्री के आत्मविश्वास को शब्द दिए गए हैं, है ना गीता? और मुझे तो प्रवेश तोनी जी की कविताओं में घर आंगन की खुशबू महसूस होती है।
1: अच्छा।
0: उनकी शैली से प्रेरित ये भाव सुनिए। मां सुबह से शाम तक खुद को टुकड़ों में बांटती रहती है,
1: अरे वाह,
0: कभी दुआ बनकर, कभी छांव बनकर, तो कभी बच्चों की मुस्कान बनकर। उसके हाथों की गर्म रोटियों में पूरा घर बसता है। उसकी थकान अक्सर रसोई के धुएं में खो जाती है, पर उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती। वो खुद भी कभी थोड़ा सा सुकून चाहती है, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर अपनी सारी थकान भूल जाती है।
1: अरे नेहा, सच में ये पंक्तियाँ सुन के ना मेरा तो मन भावुक हो गया। और इन पंक्तियों को सुनकर ना अंकिता आनंद जी की भी कविताओं की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं मुझे, जो एक स्त्री को उड़ान देती है, जो इस तरह से हैं कि मैं नदी हूँ, मुझे बहना आता है, रास्ते रोकने वाली चट्टानों से अब डर नहीं लगता, मैंने अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्हीं से अपने भीतर एक रोशनी जलाई है, अब मैं गिरकर भी फिर उठना जानती हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि सपनों की मंजिल सिर्फ हिम्मत वालों को ही मिलती है।
0: वाह, कितनी सुंदर आत्मविश्वास है इन शब्दों में। और गीता, प्रेम को लेकर भी आज की कवित्रियों की सोच कितनी सुंदर और कितनी गहरी हो गई है। अब प्रेम केवल इंतजार नहीं, बल्कि सम्मान और साथ का एहसास भी है। सुनिए ये भाव। मुझे ऐसा प्रेम चाहिए जो मेरे सपनों को पंख दे, जो मेरी चुप्पियों को भी समझ सके, जो मेरे साथ चले तो बराबरी से चले, मुझे रोकने के लिए नहीं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मैं किसी की परछाई बनकर नहीं, अपने पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम करना चाहती हूँ।
1: अरे वाह, कितनी आधुनिक और खूबसूरत सोच है ना नेहा। असल में समकालीन महिला कवियत्रियों की कविताएं सिर्फ भावुक ही नहीं करती हैं, बल्कि भीतर एक नई ताकत भी जगा देती हैं। इनकी कविताओं में संघर्ष है, संवेदना है, आत्मविश्वास है, और सबसे बढ़कर जीवन को सुंदर बनाने की उम्मीद है। कभी ये कविताएं आंखें नम कर देती हैं, तो कभी मन को नया साहस दे जाती हैं।
0: तो सखियो, अगर कभी मन थक जाए या जीवन की भागदौड़ में भावनाएं कहीं खोती हुई लगे, तो इन समकालीन महिला कवित्रियों की रचनाएं जरूर पढ़िएगा। यकीन मानिए, उनके शब्दों में आपको अपना ही कोई सपना, अपनी ही कोई पीड़ा और अपनी ही कोई मुस्कान जरूर मिल जाएगी। और अब इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत।

0: स्त्री जो अपने सपनों के साथ साथ अपनों की खुशियों का भी ख्याल रखती है, जो हर परिस्थिति में समझदारी, हिम्मत और प्रेम से परिवार को संभाले रखती है, वही नारी आज हर क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना रही है।
1: और जब बात नेहा देश के सम्मान और हमारे वीर जवानों की हो तो हर भारतीय नारी का हृदय गर्व और सम्मान से भर उठता है। और इसी भावना को स्वर देने आ रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भारतीय सेना के नाम अपने विशेष संदेश के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का

मान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: तो सखियों, आज की इस प्यारी सी बातचीत में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की बातें आपके मन को छू गई होंगी और आपको अपने सपनों और भविष्य के लिए एक नई प्रेरणा भी मिली होगी।
1: जी हाँ सखियों, याद रखिए कि एक जागरूक और आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपना ही नहीं पूरे परिवार का भविष्य संवारती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
0: अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे महिला जगत के एक नए और प्रेरणादायक अंक में कुछ नई बातों और नए एहसासों के साथ।
1: तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दीजिए इजाजत मुझे यानी गीता शर्मा,
0: मैं नेहा गोस्वामी,

अभी आप कार्यक्रम महिला जगत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और फिर होंगे दोपहर समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1,000 वर्ष तक प्रेरित करेगा उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि आने वाले 1,000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी अनेक प्रकार के बंधन लग गए उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में

0: विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग BSF को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा। BSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल

0: के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज 2 मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति

0: को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 और ठीक 10 सेकंड हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आइए सुनते हैं मनोज मुंतशिर के लिखे गीत को, संगीत से सवारा है रोहक कोहली ने। इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल ने, फिल्म का नाम है रेड 2।

0: स्टेबिन बैन और साथियों का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था समीर अनजान ने, संगीत से सवारा था सिद्धार्थ मिश्रा ने, फिल्म का नाम था बागी 4। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: वो दिल है रांझणा मेरा जिद ते अड़ी आई ओए, दिल है रांझणा किस्मत से लड़ी आई ओए, वो दिल है रांझणा मेरा जिद ते अड़ी आई ओए, दिल है रांझणा किस्मत से लड़ी।

आइए सुनते हैं फिल्म छत्रपति का ये गीत। इस गीत को गाया है अर्श किंग और पलक मुंचाल ने। गीत को लिखा है मयूर पुरी ने, संगीत से संवारा है तनिष्क बागची ने।

आइए सुनते हैं सईद कादरी के लिखे गीत को। संगीत दिया है मिथुन ने, इस गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम है गदर 2।

0: इतनी सी बात।
1: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म सेम बहादुर का ये गीत। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा यहीं पर संपन्न होती है। संध्या 5 बजे अपनी दूसरी सभा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: मजेदार क्विज टाइम।
1: और दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा नगर ठोस अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस प्लांट स्थित है?
0: और हमारा दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल और कार्निवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ था?
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिए, हम इनके जो जवाब हैं वो आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
2: ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह, फसा।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: शाही से नहीं त्याग से इतिहास लिखा जाता है, जो वतन के लिए जिए वही अमर कहलाता है। आंधियों ने लाख कोशिश की चिराग बुझाने की, मगर देशभक्ति का उजाला कभी कम नहीं हो पाता है। कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ नाम सदियों तक रोशन हो जाते हैं। जिनके हौसलों में हिंदुस्तान बसता है, वे हर दिल में सम्मान बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व का, जो कि है आसफ अली साहब का।
3: दोस्तों, आज है उनकी जयंती। वो एक कुशल वकील, वक्ता और देशभक्त नेता थे। उनका जन्म
2: 11 मई 1888 को दिल्ली में हुआ था।
3: उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की और एक सफल एडवोकेट बने।
2: लेकिन सुमन, उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। खास तौर पर क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा।
3: सही कह रही हो तुम। ब्रिटिश सरकार ने उनको कई बार जेल में डाला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। देश के लिए उनका समर्पण अद्भुत था। यही वजह है कि आज उन्हें एक निडर और ईमानदार नेता के रूप में याद करते हैं।
2: दोस्तों, आसफ अली जी की एक और खास बात थी उनकी सोच की। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की बात करते थे। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है,
3: और यही संदेश आज उतना ही जरूरी है। जब समाज में एकता और प्रेम होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। आसफ अली जी ने अपने जीवन से हमें यही सीख दी कि देशभक्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने देश की सेवा जारी रखी। वो भारत के पहले एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स भी बने। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियां निभाई और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया।
3: उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज की पीढ़ी को उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि मेहनत, ईमानदारी और देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।
2: दोस्तों, जयंती केवल किसी महान व्यक्ति को याद करने का दिन नहीं होती है, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का अवसर भी होती है।

दोस्तों किताबों से लेकर जिंदगी तक देखते हैं आपका नॉलेज। तो अब वक्त आ गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, क्योंकि शुरू होने जा रहा है हमारा

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कुछ कहानियां सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती, वो समाज के चेहरे पर उभरते सवाल बन जाती हैं। कुछ शब्द तालियां नहीं तूफान लेकर आते हैं, और कुछ लेखक समय से बहुत आगे चल पड़ते हैं।
3: एक ऐसा ही नाम जिसने सच को बिना किसी पर्दे के दुनिया के सामने रखा, जिसने इंसानियत की टूटती तस्वीर को अपने अल्फाजों में उतार दिया, जिसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों को जखोर देती है।
2: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उर्दू साहित्य के उस बेबाक, संवेदनशील और महान कथाकार की, जिन्हें दुनिया सआदत हसन मंटो के नाम से जानती है। तो आइए मंटो जयंती के इस खास अवसर पर उनके शब्दों, विचारों और कहानियों की इस दुनिया में चलते हैं।
3: दोस्तों, 11 मई 1912, एक ऐसा दिन जब साहित्य की दुनिया में एक ऐसे सितारे ने जन्म लिया जिसने अपनी लेखनी से उस सच को उजागर किया जिससे समाज अक्सर नजरें चुराता है। मंटो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वे समाज की धड़कन को सुनने वाले एक इंसान थे।
2: दोस्तों, सआदत हसन मंटो जी ने अपनी कहानियों में उन लोगों की आवाज उठाई जिन्हें समाज अक्सर भुला देता है। उनकी लेखनी में दर्द भी था, सच्चाई भी थी, और इंसानियत के लिए

0: गहरी संवेदना भी थी। दोस्तों, मंटो का बचपन आसान नहीं था, लेकिन शायद वही संघर्ष और उनकी कहानियों की ताकत बन गया।
1: उन्होंने फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी, रेडियो के लिए नाटक लिखे और फिर ऐसी कहानियाँ लिखी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और निशा, सबसे खास बात यह है कि मंटो ने कभी भी सच लिखने से डर महसूस नहीं किया, चाहे समाज उन्हें कितना भी गलत समझे। उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने देखा, महसूस किया और जिया।
0: सुमन, मंटो की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोस्त और बू जैसी रचनाएं शामिल हैं। इन कहानियों में विभाजन का दर्द, इंसानी रिश्तों की टूटन और समाज की सच्चाई बेहद गहराई से दिखाई देती है।
1: दोस्तों, जब भारत का विभाजन हुआ तब सिर्फ देश नहीं बटा था, लोगों के दिल भी टूटे थे। लाखों लोग बेघर हुए, रिश्ते बिखर गए और इंसानियत तो जैसे कहीं खो ही गई।
0: और दोस्तों, उसी दर्द को मंटो ने अपनी कहानियों में उतारा। उनकी मशहूर कहानी टोबा टेक सिंह आज भी विभाजन की सबसे मार्मिक कहानियों में गिनी जाती है। एक ऐसा पात्र जो ये समझ ही नहीं पाता है कि उसका घर आखिर किस देश में है।
1: मंटो की कहानियाँ पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आईना हमारे सामने रख दिया हो, एक ऐसा आईना जिसमें समाज का असली चेहरा दिखाई देता है।
0: लेकिन दोस्तों, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। मंटो को अपनी कहानियों की वजह से कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने कभी अपनी लेखनी नहीं रोकी।
1: उन्होंने एक बार कहा था, अगर आप मेरी कहानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते
0: तो इसका मतलब यह है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या गहरी बात कही थी उन्होंने। मंटो का मानना भी था कि लेखक का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता है, बल्कि समाज को उसकी सच्चाई दिखाना भी होता है।
1: दोस्तों, आज जब हम मंटो की जयंती मना रहे हैं तो यह सिर्फ एक लेखक को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि सच, संवेदना और उनको याद करने का दिन है।
0: बिल्कुल, मंटो ने हमें ये सिखाया है कि साहित्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता है, बल्कि साहित्य वो ताकत है जो समाज को सोचने पर मजबूर कर दे।
1: दोस्तों, आज के दौर में भी मंटो की कहानियाँ उतनी ही सार्थक है, क्योंकि इंसानियत, दर्द, रिश्ते, समाज के सवाल आज भी हमारे बीच मौजूद है।
0: और शायद यही वजह है कि मंटो आज भी जिंदा है, अपनी कहानियों में, अपने विचारों में और हर उस इंसान के दिल में जो सच को सुनने का साहस रखता है।
1: निशा, तुम्हें पता है, कभी कभी सोचती हूँ अगर मंटो आज होते तो शायद समाज को देखकर फिर वही कहते, दुनिया बदल गई है लेकिन इंसान के भीतर के सवाल आज भी कहीं ना कहीं वहीं खड़े हैं।
0: सच कहा तुमने सुमन, मंटो ने अपने छोटे से जीवन में ऐसा साहित्य रचा है जो सदियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहेगा।
1: 18 जनवरी 1955 को मंटो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी लेखनी आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है।
0: और उनकी कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती हैं, महसूस भी की जाती हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, कलम की असली ताकत वही होती है जो बंद आँखों को भी सच दिखा दे।

0: धूप की एक छोटी सी किरण सिर्फ उजाला ही नहीं लाती है, बल्कि हमारे शरीर में सेहत और ऊर्जा का खजाना भी भर देती है।
1: लेकिन सोचिए, अगर यही धूप हमारी जिंदगी से दूर हो जाए तो शरीर धीरे धीरे थकने लगेगा, हड्डियाँ कमजोर पड़ने लगे और चेहरा भी फीका सा दिखने लगेगा।
0: जी हाँ दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक ऐसी कमी तेजी से बढ़ रही है जो चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है,
1: और उस कमी का नाम है विटामिन डी, जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है।
0: आखिर विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी है, इसकी कमी से समस्याएं भी हो सकती हैं। थोड़ी सी धूप और सही खान पान जो है वो हमें स्वस्थ बना सकता है।
1: दोस्तों, आजकल हम में से ज़्यादातर लोग ऑफिस, मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि धूप से हमारा रिश्ता ही कम होता जा रहा है। सुबह देर से उठना, पूरे दिन एक एसी कमरे में रहना और बाहर कम निकलना, ये सब आदतें धीरे धीरे शरीर में विटामिन डी की कमी पैदा कर रही है।
0: लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है सुमन, कि आखिर विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है, यानी हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है।
1: और सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं, विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम, मांसपेशियाँ और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब शरीर खुद विटामिन डी बनाता है, यही कारण है इसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं।
0: सुमन, लेकिन आज की जीवन शैली में लोग धूप से बचते हैं, कोई धूप में निकलने से डरता है तो कोई हमेशा सनस्क्रीन लगा कर रहता है, ऐसे में शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता है।
1: सही कह रही हो तुम। विटामिन डी की कमी के कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं, जैसे बार बार थकान महसूस होना, शरीर और मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द, बाल झड़ना और बार बार बीमार पड़ना।
0: कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य कमजोरी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक विटामिन डी की कमी बनी रहे तो इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
1: और बच्चों में इसकी कमी रिकेट्स नाम बीमारी से होती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती है, और वहीं बड़ों में हड्डियों का कमज़ोर होने का जो खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है।
0: सुमन, आजकल सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, युवा और बच्चे भी विटामिन डी की कमी का शिकार हो रहे हैं।
1: हाँ निशा, ऑनलाइन पढ़ाई, मोबाइल गेम्स और स्क्रीन टाइम में बच्चे इतना बिजी हो गए हैं कि बाहर खेलना कूदना सब कम कर दिया है। पहले बच्चे घंटों धूप में खेलते थे, लेकिन अब ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं।
0: दोस्तों, अच्छी बात यह है कि विटामिन डी की कमी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है।
1: निशा, इसका सबसे आसान तरीका है रोज़ सुबह की हल्की धूप लेना। सुबह 8 से 10 बजे तक धूप शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा अपने भोजन में विटामिन डी युक्त चीज़ें शामिल करना, दूध, अंडा, मछली, मशरूम।
0: दोस्तों, अगर किसी

0: व्यक्ति में विटामिन डी की कमी ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बिना सलाह के दवाइयाँ लेना सही नहीं है।
1: लेकिन निशा, मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर सेहत की बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं लेकिन छोटी छोटी आदतों को भूल जाते हैं।
0: सही कहा तुमने, कभी कभी सिर्फ 15-20 मिनट की धूप भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद कर सकती है।

0: कभी सोचा है सुमन, एक देश में बनी चीज दूसरे देश तक कैसे पहुंचती है? कैसे दुनिया के अलग अलग देशों के बाजार एक दूसरे से जुड़े हैं, और कैसे व्यापार के इस विशाल समंदर को नियमों की एक डोर संभालती है?
1: हाँ निशा, दुनिया के देशों के बीच व्यापार को आसान, संतुलित और पारदर्शी बनाने वाला एक ऐसा संगठन जो तय करता है कि कौन सा देश क्या बेचेगा, कैसे बेचेगा और किन नियमों के साथ बेचेगा।
0: इसीलिए दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की, जिसने वैश्विक व्यापार को नई दिशा और नई पहचान दी है।
1: और निशा, इसके साथ तुम सबसे पहले तो ये बताओ कि WTO आखिर होता क्या है?
0: दोस्तों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं इसे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। WTO का मुख्य उद्देश्य है दुनिया के देशों के बीच व्यापार को सरल, सुरक्षित और नियमबद्ध बनाना है।
1: यानी अगर दो देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई विवाद हो जाए तो WTO उसे सुलझाने का काम भी करता है।
0: बिल्कुल, WTO एक तरह से वैश्विक व्यापार का न्यायाधीश भी है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश व्यापार में अनुचित नियम ना बनाए और सभी देशों को समान अवसर मिले।
1: निशा, पहले जब देशों के बीच व्यापार होता था तो हर देश अपने अलग अलग नियम बनाता था। कहीं ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है तो कहीं विदेशी वस्तुओं पर रोक लगा दी जाती है। इससे व्यापार में असंतुलन पैदा होता था।
0: और इसी समस्या को दूर करने के लिए पहले GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड बनाया, बाद में उसी का विस्तृत रूप WTO बना।
1: मतलब WTO, WTO ने व्यापार को व्यवस्थित बनाया। WTO ने दुनिया के देशों को एक मंच दिया जहां वो व्यापार से जुड़े नियम तय कर सके और समस्याओं का समाधान निकाल सके। निशा, क्या भारत भी इसका सदस्य है?
0: बिल्कुल है, भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। भारत ने हमेशा विकासशील देशों के हितों की आवाज़ मजबूती से उठाई है, विशेष रूप से किसानों, छोटे उद्योगों और गरीब देशों के अधिकारों को लेकर भारत की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है।
1: वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत को कई फायदे हुए, जैसे भारत के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिला, निर्यात बढ़ा, विदेशी निवेश आया और भारतीय उद्योगों को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिली।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, आज की दुनिया में व्यापार केवल वस्तुओं को आदान प्रदान करना नहीं है बल्कि देशों के विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति का आधार बन चुका है।
1: दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें सिखाता है जब दुनिया के देश मिलकर नियम बनाते हैं तो व्यापार अधिक पारदर्शी और संतुलित बनता है।
0: और यही सहयोग वैश्विक विकास की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए हम भी समझें वैश्विक व्यापार की इस व्यवस्था को और जागरूक नागरिक बनकर देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दें।
1: दोस्तों, हमने पूछे थे आपसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में दो प्रश्न, और अब वक्त है उनके सही जवाब जानने का।
0: हमारा आज का पहला प्रश्न था, महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा नगर ठोस अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस प्लांट स्थित है? और इसका सही जवाब है नागपुर।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था आपसे, नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल और कार्निवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? और इसका सही जवाब है मणिपुर के इम्फाल में।
0: दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा वर्ष 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो देश सेवा के साथ एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं।
1: इस भर्ती अभियान के तहत लगभग 9,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई है।
0: शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं पास रखी गई है। पदों के लिए आयु सीमा 18

से 23 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थी CRPF की आधिकारिक वेबसाइट RECT.CRPF.GOV.IN पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का।
1: तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी दोस्त निशा शर्मा को
0: और मैं सुमन बिश्नोई।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही थीं निशा शर्मा और सुमन विश्नोई। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए। आइए अब सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कि आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत 6:40 पर हम आपको सुनवाएंगे जिले की चिट्ठी, वहीं शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

शाम 7:45 और रात्रि 10:30 पर सजेगी सुगम संगीत की महफिल। वहीं 8:30 पर कार्यक्रम होगा, सुनिएगा लोक संगीत।

आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा इसी सभा में 8 बजे रात्रि 9:15 पर और पुनः रात्रि 9:30 पर।

खेल जगत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे। समय रहेगा रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित करेंगे।

ये थी हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और

0: डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 6:05 हुए, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: तुम नहीं समझोगे कौल साहब, कश्मीर के रहने वाले हो ना, जहां पानी बहुत है, लेकिन इस रेगिस्तान में, हमारी सूखी प्यासी धरती में, दो बूंद पानी के कारण एक आदमी दूसरे की जान लेवे है, दो बूंद पानी के कारण एक छोरी की इज्जत का खून हो जावे, जैसे हमारी सोनकी का हुआ।
1: सोनकी कौन? तुम्हारी बहन?
2: तुमने ही तो कहा था, पहले जान पहचान
1: फिर दोस्ती और फिर प्यार।
2: तुम अपनी जान पहचान करो, तुम अपने मुल्क के बारे में बताओ।
1: किसी कवि ने कहा है कि कश्मीर स्वर्ग है, चारों तरफ पानी ही पानी, हरियाली हरियाली,
3: चंचल नदियां इटलाती हैं शोर में।

0: तुम अपने मुल्क के बारे में बताओ।
1: किसी कवि ने कहा है कि कश्मीर स्वर्ग है, चारों तरफ पानी ही पानी, हरियाली हरियाली, चंचल नदियां इटलाती हैं, शोर मचाती हैं, मगर झील में गिरकर शांत हो जाती हैं। प्रेमी जोड़े शिकार में बैठकर चांदनी रात की सैर करते हैं। जी चाहता है इस वक्त हम भी एक शिकार में होते और तुम मेरी बाहों में टोलते।
2: क्या हो सके है कि नहर जल्दी हमारे गांव पहुंच जाए, हमें और कोई इंतजार करना नहीं पड़े।
1: दूसरी सूरत यह है कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जो न सिर्फ रेत में दबी हुई चट्टानों को तोड़ दे बल्कि इन सब सरकारी दिमागों में हलचल मचा दे।
2: तो ये काम मैं करूंगा साहेब।
1: गंगा तुम अकेले क्या कर सकते हो?
2: मैं वही करूंगा जो फरहाद ने किया था।
3: आज राजस्थान नहर के अंतिम भाग का उद्घाटन जमुना सिंह, पंच गंगा सिंह, पंच हरी सिंह के हाथों होगा।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनु मलिक के लिखे चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और

0: लू की चपेट में। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ लोगों को याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो हमारी अजय सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तनोट माता, पुष्कर, खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ जैसे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली के मुंडका बरक्कलवाला टोल प्लाजा पर इस बैरियर रहित तकनीक की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण में काफी कमी आएगी। नई तकनीक के तहत वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल कॉरिडोर से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान स्वचालित रूप से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सालाना लगभग 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने बताया कि अगले महीने भारत में पहली और दूसरी तारीख को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के भीतर देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
3: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का ये अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल

0: का भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वे आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विज्ञान क्लबों से जुड़े छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और तकनीक का उपयोग समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने संस्थान से अनाज और सब्जियों में पेस्टिसाइड तथा रसायनों की जाँच के लिए आधुनिक उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। श्री बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिनसे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
1: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई स्वगणना में पिछले 10 दिन में 6.5 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया है। इन परिवारों ने इस डिजिटल प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वगणना के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। 50,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। सीकर जिला 32,000 परिवारों की स्वगणना के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह काम 14 जून तक चलेगा। उधर बालोतरा जिले में 100% स्वगणना पूरी करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। भीलवाड़ा के रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 1500 से लेकर 36,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के साथ MOU करने वाले निवेशक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगामी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रीको ने इस पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए विकसित किए हैं। राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कई हिस्सों में आज लू से जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रातें भी इन दिनों तप रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी में तापमान 46.8 तथा जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 4-5 दिन बना रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में इस दौरान लू का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं।

0: चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वंडर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में इन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये युवक मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशी लाल ने तैयार किया है। बालोतरा रिफाइनरी में जुलाई महीने से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से यूनिट की कमीशनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, किंतु उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यूनिट में आग लगने की घटना के बाद ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रिफाइनरी से जिले की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। इससे बालोतरा प्रदेश का तेजी से आगे बढ़ता जिला बन चुका है। तेजी से हो रहे विकास की कड़ी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पचपदरा बालोतरा में लग्जरी होटल्स और कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। साथ ही रेलवे की ओर से बालोतरा से रिफाइनरी तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम किया जा रहा है। वहीं कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ रीको ने रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की है। बोरावास कलावा में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हुए पहले चरण में भूखंडों की नीलामी भी की जा चुकी है। वहीं ये स्थान पेट्रोकेमिकल्स हब बनने की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बालोतरा रिफाइनरी क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्थानीय उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रीको के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावना बनी है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। बैठक के दौरान राजस्थान पेट्रो जोन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी के पास बोरावास कालावा, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, मालियों की ढाणी, थोब और जेरला क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम रथ अभियान के जरिए जिले के गांवों ढाणियों के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान 15 मई तक चलेगा। ग्राम रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 विभागों की सरकारी योजनाओं, खासतौर पर कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। रथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हर रथ में एक सुझाव पेटिका है। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक सीधे पहुंचा रहे हैं। रथ में पहली बार कलाकार भी शामिल किए गए हैं, जो रथ के साथ गांव-गांव जाकर लोक गीतों और नाटकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। जिले की सिवाना, पचपदरा और बायतू विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में ये रथ पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल भी आयोजित हो रही है, जिसमें स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुन रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। श्री बागड़े ने आसोतरा में ब्रह्मधाम में पूजा अर्चना की और गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद

0: वे मवड़ी के ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने सदैव हमारी सभ्यता और संस्कारों का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ है और भारत ने अपने इसी ज्ञान और दर्शन के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। जिले में 4 मई से 10 मई तक अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं बालोतरा जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मारी निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आए हाईवे माथे बिना रुकियां गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर बनायो जावेला। और प्रदेश रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। गुजरात रा सोमनाथ मिंदर न उजू बनावन रा 75 साल पूरा भेवन रा मौके आखा देश माए आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाई चियो। ये मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर माए पूजा अर्चना कीनी। गुजरात माए राखी जिया सोमनाथ अमृत महोत्सव माए श्री मोदी कहो के सोमनाथ मिंदर अटूट आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी है। वह कहो कि सोमनाथ लोगों ने याद दिलावे है कि जड़ाऊं जुड़ियो रहवण री सूरत में ही कोई देश लंबा भगत ताई मजबूती चाल सके है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा झारखंड महादेव मिंदर माई राखी चियो। इन माई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रा संकल्प उन सोमनाथ मिंदर ने ओजो सुधारी जियो जो माणी बेहतरीन सांस्कृतिक भावना रो दर्शाव करे है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री विकास और विरासत री सोच री सराहना करता थका कहो के देश भर माए अयोध्या, काशी और उज्जैन सरीखी धार्मिक ठोड़ा रो काया कल्प करियो जा रियो है। और राज्य सरकार ही तनोट माता पुष्कर खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ सरीखा आस्थारा केंद्रा ने विकसित करण सारू लगातार काम कर रही है।
3: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहो है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम सागे देश माए हाईवे मैनेजमेंट रो नुओ दौर शुरू हुयो है। वे आज नई दिल्ली रा मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा में थे बिना बैरियर वाली तकनीक री सर्वा

0: कीनी। श्री गडकरी कहो कि इन तकनीकों गाड़ियां टोल कॉरिडोरों 100 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार निकल सकेला और टोल रो चुकारो आपो आप वह जावेला। वह कहो कि इन व्यवस्थाओं हर साल करीब 285 करोड़ रुपये रो तेल बचेला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि बाघ शेर और चीता सरीखा मोटा जनावरा ने बचावन सारू कारोबारियां का न्यू रकम देवनो घणो जरूरी है। वह आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII रासालाना व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहा है। श्री यादव कहो कि पहलो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन 1 और 2 जून ने नई दिल्ली में राख्यो जावेला। वह बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाला राज रा 10 साल में देश में टाइगर रिजर्व री तादाद में बढ़ोतरी हुई है।
1: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7, 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का ये अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी रोजगार और आजीविका मिशन कानून लागू वेवन री अधिसूचना जारी कर दीनी है। इन पाछे वो कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू भेजा वेला। इन्हें तेत गावाई हलका माए साल माए 125 दिन री मजूरी री गारंटी दी जावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब ई मद माए चालू माली साल माए 95,692 करोड़ रुपया राखी जा है। इस आगे महिला मजूरानी भागीदारी बधावन सारू कमठाणा माथे बच्चानी देखभाल रा खास प्रावधान करी चिया है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल ने बधाओ देवन सारू महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त रा नाम परा ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर माए राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माए ओ ऐलान कीनो। वे कहो कि जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर खोलियो जावेला। कार्यक्रम रे दौरान श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर रा विज्ञान क्लबों जुड़िया विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ही विज्ञान और तकनीक ने समृद्ध और स्वस्थ जीवन सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर रा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी का नींव राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बागड़े इन संस्थानों अनाज और तरकारियां ने बचावन सारू काम ली जावन वाली कीड़ा मारन री दवाइयां और रसायना री जांच सारू नुआ उपकरण विकसित करन बाबत कहो। वे कहो कि मौजूदा दौर माए खान पीन री चीजा माए जहरीली चीजा री मौजूदगी री जांच घनी मोटी जरूरत है। ई मौके राज्यपाल राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 री स्मारिका और पोस्टर रो विमोचन कीनो। चालू माली साल 2026-27 माए देश री माली व्यवस्था माए 6.6% री बढ़ोतरी रा आसार है। भारतीय स्टेट बैंक कानियों आज जारी रिपोर्ट रे मुजब लारला माली साल री चौथी तिमाही माए असली सकल घरेलू उत्पाद GDP माए बढ़ोतरी रो अनुमान करीब 7.2% लकैचियो हो। इन बीचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री साधना ने बुद्धियों काम लेवन और बचत री अरज ने देश ने माली तौर मजबूत बनावन री दिशा माए मोटो जतन बतायो है। श्री बैरवा कहो कि दुनिया रा मौजूदा हालात न ध्यान रखता थका विदेशी मुद्रा भंडार न बचावन सारू जनता ने प्रधानमंत्री री अरज माननी चाहिए।
2: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित

0: फिर वो हमारे काम।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 रा तेत 1 मई उ चल रहा जनगणना रा पहला दौर रा तेत करी जी स्वगणना माए लाडला 10 दिन माए 6.5 लाख उम्बत्ता परिवार शामिल भैर डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। स्वगणना रा मामला माए अव्वल जयपुर जिला माए 50,000 उम्बत्ता परिवार स्वगणना पूरी कर लेनी है। सीकर जिलो 32,000 परिवारों री स्वगणना सागे दूजा नंबर माथे है। ध्यान जोग है कि स्वगणना रो काम 15 मई ताई चलेला। 16 मई उ 14 जून ताई प्रगणक घर घर जार मकाना री गिनती करेला। इबीचे बालोतरा जिला माए सगला घरां माए स्वगणना पूरी करावन वाला प्रगणका अर सुपरवाइजरां रो आज जिला कलेक्टर मानकीनो। भीलवाड़ा रा रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क माए कारखाना लगावन वाला सारू रिकोरी ओर प्लॉट देवन री प्रक्रिया शुरू करी ची है। इना तेत 2,500 उ 36,000 वर्ग मीटर ताई रा प्लॉट मुहैया कराया जावेला। राइजिंग राजस्थान अभियान रा तेत राज्य सरकार सागे करार करन वाला निवेशक रिकोरा ऑनलाइन पोर्टल रे जरिए 14 मई ताई अर्जी दे सके है। ई पार्क माए बुनियादी सुविधा विकसित करण सारू करीब 221 करोड़ रुपया मंजूर करी चिया है। रबे मौसम राज्य रा आतुणी हल्का माए घनी जोरदार गर्मी बीच लू बाज रही है। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हल्का माए आज लू बाजनो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। बाड़मेर माए 47.3 फलौदी माए 46.8 जैसलमेर माए 46.5 और बीकानेर माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। कई थोड़ा रात्रि भगत ये तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब दिन और रात्रि भगत तापमान माए बढ़ोतरी आवता 4-5 दिन ताई चालती रे वन रा आसार है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग माए लू बाजती रहवन री शंका है। इबीचे आवता 48 घंटा माए बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माए कठा कठा तेज आंधी सागे छाटो छिड़को वेवन री संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिला माए निम्बाहेड़ा गेला माथे वंडर चौराहा कन्ने आज तड़के अनजान गाड़ी री फेंट माए आ जावण 3 जना री मौके ही मौत वेकी। ए लोग मजूरी कर रे पाछा घरां जा रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार दिया जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आई हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। और प्रदेश रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं अनिल सिंह और दीवान दान रत्नू।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने सगले किसान भाई ने आपरे साथी दीवान दान रत्नू
1: और अनिल सिंह खिचड़ा घना घना राम राम। दीवान भाई थाने भी घना घना राम राम सा
0: मोकला मोकला राम राम। अनिल भाई आज तो बारू आयो हो, थोड़ी देर पहले आकाशवाणी में जद तो बारे आज तो दिन भर लू जोरदार चल रही है और आज पूरे प्रदेश में ही हमारे बीकानेर में भी लू खासी चल रही है। गर्मी रो मौसम है तो इन गर्मी रो मौसम में आप कहीं कहना चाहो?
1: देखो दीवान भाई जो की थे बात कही हो वह साची है और मैं के करना चाह सगली जनता ही करना चाहे। अब जो किसान भाई बहन है वे जो बिजाई है नी कपासरी वह करनी चाहे कि भाई अपा सिंचाई रो साधन है तो अच्छी पैदा लेने खातर अपा कपासरी बुआई है टेम माता कर देवा ताकि आपने फायदो मिल जाए।
0: पर देखो गर्मी है तो गर्मी तो अपने भी गर्मी लागे है, अपा भी गर्मी में प्रभावित हुआ तो सिंचाई भी सिंचाई और फसल भी गर्मी में प्रभावित हुई।
1: तो देखो दीवान भाई पूरी दुनिया रमाई आपनो एक भारत देश ही सोई है जग देश रमाई आप सगली ऋतुआ रो आनंद ले सका और सगली ऋतुआ में सगली फसलों रो उत्पादन ले सका। तो भाई सरु अपा ने जकी कपास री बुआई करा वह खतरे एक उचित तापमान चाहिए जे करे और वो तापमान जो आपने अप्रैल और मई में मिला करे और आप अप्रैल मई में रमाई जकी कपास री बुआई है वह टेम शुरू करा और बुआई करने से पहला आप गहरी जुताई हलसू करा और मिट्टी पलटन आ रहा हलसू करा ताकि अपने खेत रे मिट्टी रे माई जका कैस का कीट है वह खत्म हो जाए और अपनी कपास री फसल ने नुकसान नहीं पहुंचावे और कपास री जकी बुआई करा दीवान भाई तो वह मैं आप जो बीज उपचारित करनो नहीं बोला।
0: बिल्कुल देखो साहब मैं ठहरिया धोरा धरती रहा मिनख क्योंकि मारे बीकानेर क्षेत्र में या बीकानेर रहा फिर भी मैं आथुण क्षेत्र में आवा तो मारे अठे कपास रो उत्पादन कम देखने मिले लेकिन थे तो भाई पानी आली नहरी बट नाली जेड़े बट इलाके में आया हो तो थाने इन कपास री खेती री बारे में ज्यादा ज्यादा नॉलेज है और ई खातर मैं अनिल भाई के अपा कपास रे बारे में आगे थी खेती रे रूप में यदि अबारे वक्त में कपास री बुआई कर ला तो इमें कोई किणी प्रकार रो अपाने कोई नुकसान तो नहीं हुए किसान भैया ने?
1: देखो दीवान भाई अपा जो कि कपास री आजकल उन्नत किस्म है वह 15 अप्रैल से ले 15 मई रे बीच में बिजान कर सका पर कई इसी किस्म भी है जिन्हें आप जून रे पहले महीने यानी जून रे पहले
0: अगले महीने
1: सप्ताह तक आप बुआई कर सका और मैं अच्छा उत्पादन भी ले सका। तो वह सरु अपने किसान भाई बहन ने जागरूक होना जरूरी है और किसान भाई बहन जागरूक हो तो आजकल आप देखा कभी आपने बीकानेर क्षेत्र रमाई जगह जागरूक किसान है वो कपास री भरपूर
0: पैदावार
1: सिंचाई रे जगह साधन है वह में भी जो फुहारा सिंचाई पद्धति है और टेम सरु जो की मोटी बात है दीवान भाई खरपतवार निकालनी खरपतवार निकालने में तो वैसे ज्यादा आमदनी आवे और आपने जो पोषक तत्व दिया है मिट्टी में वह भी अपनी फसल ने मिले तो आपने उत्पादन ज्यादा बढ़े।
0: तो गर्मी में गहरी जुताई करना तो पोषक तत्व भी ठीक रहे और खरपतवार भी नहीं हुए तो आ तो बहुत बढ़िया है कि आप कपास किसान भाई टेम माते करा पहला बात करी
1: आप सर। एक और बात भी अपन दीवान भाई ध्यान रखनी चाहिए कपास खेती बाड़ी में कि भाई पौधे सु पौधे की दूरी और कतार सु कतार की दूरी जो है वह मनाई रखनी है जैसु किया का आपने पौधे ने पूरे बढ़ने को जो को अवसर मिले और जगह मिल जाए ताकि क्षेत्र मिले तो वो अच्छो पौधो है नहीं बड़ो बने और आपने ज्यादा उत्पादन देवे और साथ ही साथ अपन जो को बीज उपचार है वो गंदा कर तेजाब करनो नहीं बुला
0: उपचारित
1: कर ही मैंने बुआई करा
0: ताकि वो रोग रोग वालो बीज नहीं हो जाए स्वस्थ फसल रहे है, उत्पादन
1: मोटे तौर पर आप यह भी ध्यान देवा कि पौधे से पौधे की दूरी है वह जो की 60-75 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन जो की आप खुद से खुद की कह करा वह जो की है 60-90 सेंटीमीटर दूरी कम से कम बना रखनी है।
0: तो अनिल भाई पहला बात करी ही कि आज रो दिन और आज रे कई दिन हूँ गर्मी ज्यादा पड़ रही है लू सी बाज रही है तो मैं तो सगले किसान बहन ओ भी करो खेती रे काम रे साथ साथ है अपन खुद रे ने भी बचावा गर्मी हूँ बचावा
1: क्योंकि दीवान भाई थे बात अच्छी टो रहो और जो की आज रे समाज में जरूरत है वह बात ले रहा हो क्योंकि थे ग्रामीण क्षेत्र से नई नई बात ले रहा हो तो वह सर ध्यान रखना चाहिए कभी अपना चक्का टबरिया है बुजुर्ग माइत है तो उन्हें अपना सेवा बाड़ी करा और वह सर ध्यान भी देवा कि गर्मी में लू से बचने खातर जगह प्रयास है वो भरपूर करा और लू में कई बात रो ध्यान रखना चाहिए वो धने
0: बिल्कुल लू रो ध्यान रखा क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया वे तो किसान भैया अपारो पहलो सुख निरोगी काया आप यदि अपा खुद स्वस्थ रहवाला तो अपार खेती रा काम काज भी कराला और परिवार सगले छोटे मोटे बूढ़ा बडेरा

0: सगड़ा रो ध्यान रखा, लेकिन मैं तो थे कहन एक काम री बात, मैं तो आके हूँ इन गर्मी री मया जिका पक्षी है, जिका अनबोल पक्षी है, उनारो भी ध्यान रखा।
1: तो देखो उनारो तो ध्यान रखा ही रखा, पर उनारो ध्यान रखता ना अपना बुजुर्ग माइत कवे भी है, कभी जकी ठंड सु अचानक निकल अपने लू में नहीं जानो है, चाहे लू में चले गए नहीं अचानक तातट में चले गए तो अपना चपेट में आ जावा, और अपने जो को काम करना चाहिए पक्षियों रो ध्यान रखना, उन्होंने पानी देना, वो फिर कोई दूसरो ही करे, तो आप वे सुन ध्यान रखा कभी टाइम सरु आप जका उपाय है वे अपनाता पशु पक्षियों को ध्यान रखा, और उन्होंने भी ठंड और जो को पानी की उपलब्धता है वह टाइम टाइम सरु कराता रहा।
0: तो सगड़ा रो ध्यान रखा, और किसान भैया आगे बात करा ला तो अनिल भाई तो ले चला आपा गीतल तरफ,
1: और चौपाल में आपा गीतला सुना जो अपना किसान भाई बहन भी खुश हो जाए, और जकी थकान है वह दूर हो जाए, अपनी बातों में भी जकी कैसे कहा कभी बातों ने सुने ही को नहीं, मनन भी करे और काम में भी ले
0: कान बात एडी और बात अनिल भाई आगे और बताई सी अपन किसान भैया। तो समुद्र खान रहे और सतार खान रहे और सुना ओ गोरबुंद गीतड़ लू।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: जलवायु, उपभोग और उत्पादन, यह यूनेस्को का संदेश है। अत्यधिक उपभोग जलवायु संकट को और बढ़ा रहा है। आज की इकोनॉमी, खासकर अमीर देशों में, तेजी से उत्पादन और बेकार उपभोग का बढ़ावा देती है। इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, संसाधन खत्म होते हैं और प्रकृति को तेज नुकसान पहुंचता है। इससे ठीक करने के लिए बड़े बदलाव और व्यक्तिगत कार्रवाई दोनों की सख्त जरूरत है। सरकारों को व्यवसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा को समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति, विशेषकर संपन्न लोग, कम खरीदकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को चुनकर और ज्यादा से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, 2000 से 2017 के बीच प्रति व्यक्ति सामग्री उपभोग में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
6: दीवान भाई, अपन गीतलो सुने और अपार संदेश सुने यार। देखो अपनी बातें हैं वो खेती बाड़ी सारी अपन चल रही है, अपने अपन बात करा कि बार बार किसान रो जागरूक होना बहुत जरूरी है, जरूरी है। तो मैं सरू किया जो कि राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री भी आ रही है, फार्मर रजिस्ट्री, तो बैंक

0: हिसाबों आप रो जो किसान है वो फार्मर रजिस्ट्री मनार आप रो जो डाटाबेस है वो एक जगह यूनिक आईडी बनवा ले और यह यूनिक आईडी है वो 11 अंक की हो एक रहे और बैंक बारे में थे जो की जानकारी है वो अभी बताओ ने किया
1: नहीं नहीं
0: सर।
1: नहीं बात तो एक ही है, जानकारी तो देखो सरकार योजना या कोई योजना लावे है तो बा अपने किसान भाई वास्ते हितकारी हुए है और किसान भाई बिन योजना रो फायदा उठावे। और फार्मर रजिस्ट्री जिकी योजना है राजस्थान सरकारी तो आ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान वास्ते इन वास्ते अपन प्रत्येक किसान ने रजिस्ट्रेशन राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री के तहत करनो पड़ी, क्योंकि इरी रजिस्ट्री बगैर किसान भाया अपने जिको किसान सम्मान निधि योजना रो फायदो है वो नहीं मिलेगा। पहलो इस काम ओ है कि यदि अपा फार्मर रजिस्ट्री नहीं करावाला तो किसान सम्मान निधि रे तहत अपने भारत सरकार और राजस्थान सरकार के तरफ मिलार 9,000 रुपए मिलिया करे है बे अपने नहीं मिलेगा।
0: तो सागे सागे जो को दीवान भाई फसल बीमा है, कृषि लोन है, वे लेने में भी अपने आसानी हो जाए और आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी जो निःशुल्क पंजीकरण क्रास कहा। और एम के मोटे तौर पर हमारे सुनने में आई दीवान भाई कभी जो किसान रो नाम है, किसान री जमीन री जकी फर्द बोलिया करा वह जरूरी है, बैंक खातों और फसल री जकी जानकारी है वह आप मोटे तौर पे इन्हें जमा करा।
1: बिल्कुल इनमें यह है कि मैं देखो अनिल भाई ई रजिस्ट्रेशन रे मैं पहला अपन रजिस्ट्रेशन करनो पड़ी, रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक ओटीपी आवे बा ओटीपी बाद में भी अपार आधार कार्ड जुड़ी हुए बाद में अपन रजिस्ट्रेशन सफल हुए। और इरे बाद में आजकल जो को भूमि प्रमाण पत्र है कि बैंक वगैरह में अपन जरूरत पड़े तो वो ले जावा वो भी अपन रजिस्ट्रेशन रे बिनिया पछे आसानी बन सके है। और दूसरा भी काम काज है आजकल किसाना ने जिका तहसील स्तर रहे वे भी किसान फार्मर रजिस्ट्री तहत सही हुए बात करी अपा पहला फसल बीमा योजना रो फायदो भी लेवन वास्ते भी इन इरी जरूरत पड़े। तो सरकार रो एक डाटाबेस है, सरकार चाहे कि प्रत्येक किसान है वो रजिस्ट्रेशन हुए रजिस्ट्री करे उड़ी गुणों चीजें किसान फॉर्म रजिस्ट्री रहते तो इरो गणो महत्व है।
0: तो आप जागरूक हुआ और अपना जगह किसान भाई बहन जगह राजस्थान रमाई जगह फार्मर रजिस्ट्री आप रो यूनिक आईडी नहीं बनाई है
1: तो
0: वो यूनिक आईडी बनवा ले और अपना जगह दूसरा किसान भाई बनाएंगे यूनिक आईडी बनवाने में सहायता करे और जागरूक करे। और वह सर देखो आप जुड़ा भी अपना सगड़ा मिनख किसान भाई बहन है जागरूक हो सी जदि अपनों सच्चे रूप में विकास हो। तो आप बात में समझ जावा और देखो सगड़ा हिलजुल मिल काम कराने दीवान भाई जब अपने कम खर्चे में भी ज्यादा काम हो जाए। जी हम बात करा कि आजकल रासायनिक पदार्थों को छिड़काव करे बिना पैदा को नहीं हो बतावे तो आप एक किसान जो आपने खेत में रासायनिक पदार्थों छिड़काव करे तो वे बार बार करना पड़े और वैसे आपने जो की फसल है गुणवत्ता भी गिर जाए और वह जहरीली हो जाए आपने खाने छू अपने पशु खाने छू वैसे अनेक बीमारियां भी हो तो जो आपने फसल के ऊपर इसी कीट बीमारियां होगी है जिन्होंने आपने रासायनिक पदार्थों छिड़काव करना जरूरी है। तो आप सगड़ा किसान हिल मिलर एक सागर आप किसान रासायनिक पदार्थों छिड़काव करा तो वह सगला कीट है वह एक साग ही खत्म हो जाए और अपन बार बार अपनी फसल ने रासायनिक पदार्थ रहे छिड़काव से बच जाओ।
1: बिल्कुल सही बात कही। अब देखो सा आगे बात करा ला भी पहला सुना मीठो सो गीत लियो लक्ष्मण पारिक रे गावड़ो सुना सा ओ गीत।

0: दीवान भाई देखो आप गीतर लो सुनो और सागे सागे अपनी की बात करा कभी काम धंधो चाहे खेती बाड़ी रहो चाहे अपनो हाथ रहो हुनर हो आप जो काम धंधो करानी वेन मन लगार करानी तो आगे आसानी से बढ़ सका और वे में हुनर भी ले लेवा तो अपने जो कि आगे बढ़ने रही सीढ़ी मिल जाए और अपना देखो देखी जो दूसरा किसान भाई बहन भी है वो वह क्षेत्र में आमदनी भी ले ले और आप उन्होंने की सीखा भी इसका।
1: बिल्कुल अनिल भाई देखो खेती बाड़ी रे साथ साथ है कि सो भी युवा वर्ग है आज रे वक्त में भी ने काम धंधो करनो जरूरी है और वो काम थे को जहाँ किसो भी तरह रो काम हो सके तो विशेषकर इन्हीं बात में तो एक बात कहूँ कि सरकारी एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो इन योजना में वही है कि काम सीखवे अलग अलग क्षेत्र में प्रत्येक युवा वर्ग है देखो पढ़ियो लिखियो तो आज टाइम जरूरी है ऐसा किसी योजना रे मार यदि अपन फायदो लेनो है और यदि अपन ज़्यादा मुनाफा लेना है तो पढ़ लो लिखनो तो पढ़ी यदि वो दसवीं बारहवीं पास है तो अपन रो काम धंधे वास्ते कौशल विकास योजना रे तहत सरकार ही ट्रेनिंग ले सके
0: तो देखो अपा प्रशिक्षण लेवा तो खतर का शुल्क देना पड़े अपन
1: नहीं इसमें कोई प्रकार वो शुल्क नहीं हुए है ई वास्ते सरकार ने अपने इसमें 18 से 45 वर्ष तक जिसका भी युवा भाई है वे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ट्रेनिंग कर परो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रोजगार उपलब्ध करा सके है और खुद आप रो सेंटर खोल सके है इनमें देखो बहुत बड़ा बड़ा एड़ी एड़ा काम री चीज़ा है जिसको आप ट्रेंडर बन सको एक तरह मतलब प्रशिक्षण ले पर और प्रशिक्षक हो सको जिया एआई है आज वक्त में एआई कितो शानदार प्लेटफॉर्म है एआई रो ड्रोन एआई तकनीक है बीरू आप ट्रेनिंग ले सका हाँ ड्रोन री ट्रेनिंग ले सका हाँ इलेक्ट्रिक वाहन जिका सगला भी है बिया ने तैयार करने री भी आप ट्रेनिंग ले सका हाँ तो ये तो मतलब लेटेस्ट चीज़ा है जिका निम्नतम है जिकी ट्रेनिंग अपन आज वक्त में चलन आला है इरे अलावा जिके भी स्किल डेवलपमेंट रहते हैं जिका भी कोर्स वगैरह चले है बिहारी भी आप ट्रेनिंग ले सका हाँ
0: और दीवान भाई अपन यहाँ की ठापड़ है कभी आप या ट्रेनिंग ले चुके हैं या नहीं आएंगे भी कोई अपन कोई सबूत
1: नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल अपन 4 महीना ट्रेनिंग देवेला ट्रेनिंग रे बाद में इरो एक सफल प्रमाण पत्र है सफलता रे बाद में प्रशिक्षण

0: बाद में प्रमाण पत्र दिरुजो जवेला जो भारत में सगले जगह मान्य हुए
1: और जो कहूं अपना नौकरी भी खोजने में सहायता मिला
0: सहायता मिल सके
1: और हमारे सोच में तो यह जकी योजना है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या आपने युवा आत्मनिर्भर बनाने और कुशल और रोजगारोन्मुखी जो की योजना है ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ा और फायदा उठा
0: फायदा हो सके स्किल डेवलपमेंट के तहत युवा वर्ग ने बहुत ज्यादा फायदा मिल सके इरमया एक स्किल डेवलपमेंट है जहाँ आईटीआई क्षेत्र में है भी प्रकार स्किल डेवलपमेंट है जगह अलग अलग ट्रेनिंग है आप ले सका ट्रेनिंग में इसके अलावा हर क्षेत्र में देखो आप ट्रेनिंग ले सका हाँ देखो अनिल भाई इमें अपा छोटा मोटा कोर्स है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो है ड्रोन टेक्नोलॉजी रो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो का अब आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है 3D प्रिंटिंग है कोडिंग है ए सगना है इन प्रकार आपने सरकार देखो ए चीज़ा अपन एक तो देखने में लगे कि पत्तों को कई चीज़ें लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद में आज रे वक्त में बोल बहुत ही स्कोप है
1: स्कोप भी है और आपने जो रोजगार देने में भी आसानी रहे और मैं सर देखो दीवान भाई अपा कौन सही रोजगार का नहीं जाले वहाँ सबसे पहले कि अपनों स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है और स्वस्थता की बात करानी तो स्वस्थ खानो पीनो बहुत ही जरूरी है और अब बात थे शुरू में बात भी करी कि तथी लू चालन लग रही है तो जो को आपा कलेवो करा वो अपनों जो को साफ सुथरा होना चाहिए और आप सुबह दिन के उठते ही जो ध्यान रखा कि भाई मच्छर मक्खिया रो जो प्रकोप है वो कम से कम होए और आप जो पीने रो पानी काम ले गर्मी में खास तौर से वो भी अपनों यहाँ साफ दिखने में साफ दिखे नहीं वो जल साफ को नहीं हो तो मैं सर आपने यह चीज सोचना चाहिए कि भाई पीने रो पानी ने गर्म कर छान ठंडो कर फिर पीने में काम लेवा घनी बीमारियां सो अपन बचा रहे इसका
0: और देखो अनिल भाई इमें तो अपन और भी बात कर सका हां पर अब आबा सुना एक गीत लो पछ कराला और इर बारे में बातचीत

0: हाँ अनिल भाई, गीतलू बीच में सुनायो और गीतलेरो देखो आप बीच में बिस्साई जिके कहे आप राजस्थानी में ब्रेक ले लियो और करीम का खेजर लगर। अब आप बात करता है जल ही जीवन रही है, मतलब भी देखो पानी ही सब कुछ है और ये पानी नहीं आपा संचोर रखा पानी ने अच्छी तरह पीवा और थे बात कहो जहाँ के आपा नहीं ने छाण छाण ने पीनो चाहिए, क्योंकि आज री भगत में कहे नहीं बडेरा भी एक ओखाणो दियो नहीं कि पानी पीवो छाण और रिश्तों करो और जाण। वे कहीं सोच विचार करियो है दियो है ओखाणो, क्योंकि वास्ते यदि पानी अपा छाण और पीवाला तो पानी में जिका होने वाला रोग है छाणिया बाद में नहीं लागेला और अपने पेट तक कोई नहीं पहचला।
1: बात थे सची कह रहे हो, पर ऐसा पहला अपन यो भी ध्यान रखना है कि पानी छाण जब पीछा जब पानी होसी तो पानी ने बचाने खातर अपन ने प्रयास करना है। बार बिरखा रो टेम आ गावे तो आप जका कुआ बावड़ी है अपनी उन्होंने साफ सुथरा रखा और घर रो जो पानी है वो घर रे मई रखा टांको बना लेवा और खेत रो पानी जो है खुद रे मई
0: बिल्कुल
1: ताकि अपने दूसरी सीमा पार कर नहीं जावे खेत।
0: बिल्कुल
1: जागरूक मना और यह भी ध्यान देवा जवान भाई कभी आपने जो की पहला तो शहर हम देखता पा कि भाई गली मोहल्ले में गंदगी गली में भरी पड़ी है और अब आर अपना ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता को नहीं तो अपन यो चीज़ सोचनी है कि भाई अपनों घर घर पानी रो कनेक्शन हो गया है तो अपन बे पानी ने बिखेरनो को नहीं है, नल ने खालू नहीं छोड़नो है, एक ही पानी छू अपा 5-10 काम कर सका जिया कपड़े धोना पानी छू अपा गाड़ी साफ कर सका और जो अपा बर्तन धोवा और करा तो वह छू अपा पेड़ पौधा में डाल देवा तो अपना एक पानी छू अपा घना ही काम ले सका वरना तरीके से काम करा।
0: बिल्कुल
1: जल है तो कल है,
0: कल है तो बिल्कुल जल बचाने, बिल्कुल जल बचाने का तरीका मतलब पग पग माते आप जल संचय रहो जल बचाने वास्ते अनिल भाई कर सका, क्योंकि जल ही तो कल है तय को जा। बिल्कुल अपा चाहे वो पानी व्यर्थ जावे तो भी ने अपा काम में लेवा और यदि आगे अपारे बारिश रो पानी आवे तो बारिश रो पानी बचाने वास्ते भी अपा जल कुंड रो निर्माण करा सका। हाँ पहले ही अपा सोचा के आजकल तो शहरा में जिका नुआ मकान बने हैं भी मकान बनाने पहला भी लोग बागे आजकल छत्रो पानी अपार कुंड तक लाने वास्ते वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एड़ो बना दे तो वो भी अपा पार्लर पानी भी स्टोरेज होवे। और अनिल भाई अपने कई नागौर जिले में जोधपुर जिले में बाड़मेर जिलों में इन प्रकार जिको पार्लर पानी रो स्टोरेज करना भी बहुत जगह देखियो है और पार्लर पानी अपने शरीर स्वास्थ्य वास्ते भी बढ़िया हुए।
1: तो देखो आप इन बातों ने समझा जाना और मैं सर एक बात और ध्यान रखा कि भाई आप बड़े क्षेत्र पर खेती बाड़ी करा वह भी अपनी सोच है और मैं सर कह के अपन पानी की जरूरत पड़े पर आप परंपरागत खेती रे सागे सागे जबकि उन्नत तकनीका खेती है फल फूल सब्जी री खेती बाड़ी करा और वह में भी आप जहाँ बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है वह ने अपनावा मटका विधि ने अपना लेवा तो मैं सू कह के कम पानी रे मैं आप बड़े क्षेत्र पर खेती बाड़ी भी कर सका और मैं सू हरियाली भी बनाई रखा तो सगली रीत वहाँ टेम सर आवे इन बातों ने समझा और
0: पानी रो बचाव कर सका। तो अब जाता करता सुना आपा सीमा मिश्रा गौड़ो गीत लो।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम रो वक्त हो रियो है पूरो तो देव सिख आपरे साथी दीवान दान रत्नू
1: और अनिल सिंह खिचड़ ने घना घना
0: राम राम काल फिर मिलसा।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 7:45 हुए। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम और ऊंचे नल से। आइए अब सुनते हैं शोभना राव की मखमली आवाज, रेत पे लिख के नाम तेरा।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में इस वक्त शाम के ठीक 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज नागिन फिल्म के लिए। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने। तो आइए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

साहिर लुधियानवी का लिखा नगमा अभी आपने सुना। आवाज थी महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम था हमराज। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज। नीलकमल फिल्म के लिए

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें,

0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of Kharif 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता

0: सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई।

0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60-day stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।

धर्मात्मा, जी हाँ ये नाम था फिल्म का जिसका नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज़ हीरो फिल्म के लिए। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीत। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज के साथ ताजमहल फिल्म के लिए

आप तो ऐसे ही न थे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हेमलता की आवाज में। आइए अब सुनते हैं रजिया सुल्तान का ये सदाबहार गीत। आवाज है लता मंगेशकर की।

पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश के तौर पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ उपहार फिल्म के लिए।

इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है, कुछ ही पल हम आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल जगत के आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे राष्ट्रीय कराटे चैंपियन अर्चना सिंह से गोपाल लखन की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कराटे पर। कराटे एक ऐसा खेल है जिससे न केवल हम अपने क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं, अपितु हम अपने स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं यदि कोई मुसीबत हमारे पर आन पड़े। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कराटे की नेशनल चैंपियन अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी कराटे के अलावा बैडमिंटन की एक अच्छी प्लेयर हैं, एक रेफरी एम्पायरिंग का काम करती हैं और भी बहुत सारे खेलों में इनका दखल है। अर्चना जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार सर।
1: अर्चना जी, कराटे पर बात करते हैं, किस तरह से का खेल है कराटे और इसको किस तरह से पहचाना जाता है?
2: कराटे को सबसे पहले आत्मरक्षा के तौर पर पहचाना जाता है कि हम इसमें अपनी रक्षा कर सकें और दूसरों की रक्षा कर सकें। लेकिन साथ ही यह खेल इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा चुका है। अलग अलग संस्थाएं इनको करवा रही हैं, WKF की तरफ से होता है, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप के तौर पे होता है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, राज्य प्रतियोगिताएं, साथ ही साथ लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
1: कराटे के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी खतरनाक खेल है और इसमें चोटिल होने की काफ़ी संभावनाएँ हैं खिलाड़ियों की।
2: चोटिल होने की संभावनाएं अब इस समय के दौर में तो बहुत कम हो गई हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं। पहले काफ़ी आज से 10-20 साल पहले की बात करूं तो चोटिल होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती थी। आजकल एक खेल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सेफ्टी तरीके से हम लोग इसको खिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चों को लगता है मारपीट का गेम है, लेकिन मारपीट का गेम नहीं है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को, आत्मविश्वास को बढ़ाने का खेल है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास के साथ उन परिस्थितियों

0: का सामना कर सके, वो खेल है ये।
1: जी, भारत में खेल परिदृश्य काफ़ी बदला है और अब काफ़ी तेज़ी से युवा और यहाँ तक के छोटे बच्चे भी किसी न किसी खेल में आ रहे हैं। कराटे में बच्चों को आना चाहिए, क्यों आना चाहिए सबसे पहला तो इसमें ये पूछेंगे, और किस उम्र में आना ठीक रहता है कि जहाँ से कराटे की शुरुआत की जा सके।
0: सर क्यों आना चाहिए? पहले भी मैंने कहा है हर बार, खुद को बचाने के लिए। विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन को एकाग्र करके उन परिस्थितियों से यदि निकाल सकें खुद को, इसके लिए आना चाहिए। जिसमें कराटे सीखने के बाद हम में एक हिम्मत आ जाती है और हम उन परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ अब उम्र की बात करें तो छोटे बच्चे मार पिटाई करते हैं, उसको उनके एक ऊर्जा लेवल को सही दिशा में देने के लिए हमें चाहिए कि हम किस तरीके से उनको करें। आजकल 2-3 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रामक होने लगे हैं और यह पारिवारिक परिवेश है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो हम लोग, जो मैं लेती हूँ बच्चों को इसको खेल में, कम से कम 3 से 4 साल की उम्र से बच्चे खुद को अनुशासित करना सीख जाते हैं और वहाँ से हम इनको आगे बढ़ाते हुए
1: जी, यानी
0: राज्य स्तर पे।
1: खेल कराटे एक ऐसा खेल है जिसमें आपका जीवन अनुशासित होता है, डिसिप्लिन में रहना
0: बिल्कुल
1: सीखता है।
0: सर,
1: तो कराटे किसी और चीज़ के लिए बाद में जाना जाएगा, सबसे पहले डिसिप्लिन के लिए
0: यस।
1: जाना जाएगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को कराटे सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो देखते हैं कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कीम में क्या है, कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट देगा आपको, क्या इस खेल में हम कोई मेडल पाके या कोई चैंपियनशिप में जीत हासिल करके हम सरकार से किसी नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो कराटे क्या इस मायने में बहुत अच्छा गेम माना जाएगा?
0: हाँ सर, इस मायने में अच्छा गेम तो है। अलग अलग राज्यों में देश के इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर मैं बेबाक तौर पे कहूँ तो राजस्थान में हम थोड़ा सा काम कम देख रहे हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से खुद को जोड़ के रखती हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ। लेकिन अलग राज्यों की बात करें तो नौकरी भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है और प्रसिद्धि तो मिल ही रही है।
1: जी, कराटे के साथ एक शब्द और अक्सर हम सुनने में आते हैं, जूडो। और जूडो कराटे मिलके एक कंप्लीट जो है सीन उभर कर आता है कि जूडो कराटे एक ही खेल है। जूडो और कराटे दोनों अलग-अलग हैं
0: बिल्कुल,
1: या
0: दोनों अलग
1: वास्तव?
0: अलग खेल हैं।
1: जी
0: मार्शल आर्ट जिसे हम कहते हैं, एक विधा, उसके अलग अलग पार्ट हैं ये। जिसे जूडो एक अलग बिल्कुल तकनीक है, जिसमें पूरा ग्रैप करके हम लोग तकनीकों के माध्यम से गेम खेलते हैं, जबकि कराटे एक बिल्कुल अलग तकनीक है।
1: जब भी बच्चा कोचिंग के लिए जाता है कराटे की क्लास में, और अभिभावक भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा, आज मैंने भर्ती कराया और 2 साल 3 साल में वो रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो कितनी जल्दी हम सीख जाते हैं कराटे को और कितनी जल्दी हम रिंग में उतर कर अपने प्रतिद्वंद्वी को धूल चटा
0: सर
1: सकते हैं?
0: ये तो हमारे बच्चे पे खुद पे निर्भर करता है, साथ ही साथ उसके प्रशिक्षक पे। प्रशिक्षक यदि अच्छा है तो कम से कम 3 से 5 महीने में शुरुआती टेक्निक्स उसे सिखा के वो रिंग में उतार सकते हैं खेल के तौर पे। लेकिन बाकी अगर मैं कहूँ तो टेक्निक सीखते सीखते तो सारी उम्र लग जाती है। यह बेल्ट के तौर पे है, 3-3, 6-6 महीने के कोर्सेज होते हैं। उसमें बच्चे को पारितोषिक तौर पे एक बेल्ट दी जाती है, प्रारंभिक स्तर पर वाइट बेल्ट से शुरुआत की जाती
1: जब
0: है।
1: स्टार्ट होता है,
0: जी बिल्कुल,
1: और ब्लैक बेल्ट धारी को कहते हैं वो पारंगत हो गया, ये
0: हाँ
1: सच है?
0: सच तो है। आजकल मैं खेल की तकनीकियों को देखते हुए कह सकती हूँ, एक प्रशिक्षक अपने तौर पे 1.5 से 2 साल में ब्लैक बेल्ट दिला देता है।
1: जी
0: लेकिन सच कहूँ तो मैं आज भी ब्लैक बेल्ट हूँ और आज भी सीख रही हूँ। तो इसमें सीखने के लिए कहीं कोई भी पूर्ण विराम नहीं है,
1: यानी
0: आपको
1: लगातार
0: सीखना तो पड़ेगा ही।
1: लगातार सीखना पड़ता
0: बिल्कुल
1: है। इक्विपमेंट की बात की थी कि अब उतना खतरनाक नहीं है या चोट लगने की संभावना कम हो जाती है जब
0: जी
1: हम इसके सुरक्षा उपकरणों के साथ में खेलते
0: हाँ,
1: हैं। कितने तरह के इक्विपमेंट कराटे में काम आते हैं और क्या वो कितने कॉस्टली हैं कि हर कोई अफोर्ड कर सके?
0: सर अफोर्ड करने की तो बात है, हम आजकल सारे माँ बाप ब्रांडेड पे जाने लगती हैं। लेकिन अगर हम बेसिकली तौर पे देखा जाए तो बेसिक तौर पे नॉमिनल चार्जेस पे इक्विपमेंट्स आते हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें हाथ के ग्लव्स, पैरों के लिए सिन गार्ड, हेड गार्ड, माउथ गार्ड, मुंह से बचने के लिए,
1: जी
0: मुंह में लगाते हैं उसको माउथ गार्ड कहते हैं। तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन

0: मेन मैं कहूँगी बॉयज़ के लिए ग्रोइन गार्ड है और गर्ल्स के लिए चेस्ट गार्ड, तो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. और ये हम लोग मोस्ट ऑफ ऑल 6 से 8 साल के बाद से शुरू कर देते हैं.
1: आमतौर पर ये माना जाता है कि जितनी अच्छी बच्ची कैचिंग पावर होती है उतना जल्दी सीखता है। फिर भी कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन है कि आप साल में, 2 साल में, 6 साल में, कोई कोर्स इतने समय में हम सीख सकते हैं कराटे को?
0: हाँ सर, ये तो है. अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को 6 से 8 महीने ही डालना चाह रहे तो वो बेसिक करके निकल सकता है, लेकिन उसे अगर हमें खेल में डालना है तो फिर लगातार अभ्यास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो पारंगत नहीं होंगे. हमने कुछ पहली टेक्निक सीखी है, हमने उसकी कोई तकनीक ने वापस हमने काम करना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल किक की बात करें या पंच की बात करें या ब्लॉक की बात करें, इन तीनों को मिला के ही कराटे बनता है.
1: जी
0: तो अगर हमने बात ही वहां से शुरू करी है कि हमने ब्लॉक करने सीख लिए और छूट गया, उसके बाद नहीं हो पाएगा, फिर वो बच्चा आगे वाली टेक्निक सीख नहीं पाएगा. तो इसलिए एक बेसिक, कम से कम 1 से 2 साल का समय तो हर माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए. और इस दौरान प्रशिक्षक अमूमन तौर पे कम से कम 2-4 प्रतियोगिताएं तो बच्चों को खिलाते ही हैं,
1: जी
0: तो बच्चे की एक झिझक भी निकलती है खेल के तौर पर, प्रति स्पर्धात्मक रूप से कहूँ तो.
1: हर एक खेल, जितने भी गेम हम खेलते हैं, उसमें शारीरिक दमखम एक महत्वपूर्ण है, और हर एक खेल में थोड़ा थोड़ा दिमाग भी चलता है।
0: बिल्कुल.
1: तो कराटे को आप मतलब दिमाग का खेल मानेंगी या शारीरिक दमखम
0: नहीं
1: को?
0: सर, कराटे जो है, मैं आपको बता दूं, मन और शरीर के संतुलन का खेल है. अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है और आप सिर्फ एनर्जी लगा रहे हैं सामने वाले को, तो आपको एक गेम कुमिते बोलते हैं जिसको, हम दो
1: जी
0: प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं उसमें अगर बात करेंगे और आपने सिर्फ दम लगाया है, तो फिर आपको वहां पे रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी. आपको वहां पे अंपायर जो खेल खिलाता है उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. आपको वहां पे हर बार वार्निंग मिलेंगी, चेतावनियां मिलती हैं, क्योंकि हम जब खेल खेलते हैं तो ये एक सॉफ्ट टारगेट गेम है, हमें
1: जी
0: फुल टारगेट नहीं कहते. जैसे मैं आपको एक बार बीच में बता दूं, एक और गेम को मैं बीच में लेकर, ताइक्वांडो.
1: जी
0: ताइक्वांडो फुल कॉन्टैक्ट गेम है जिसमें हम पूरी तरीके से हिट करते हैं और दूसरे आपके अपोनेंट को बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है.
1: जी
0: सुरक्षा गार्ड उसमें ज़्यादा है क्योंकि उसमें किक्स का प्रयोग किया जाता है.
1: जी हाँ
0: हमारे कराते में किक पंच दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉफ्ट टारगेट टच एंड बैक करते हैं, ये टेक्निक सिंपल मैं हिंदी इंग्लिश बोलूँ तो टच एंड बैक ही बोलते हैं,
1: जी
0: स्पर्श करना है हिट नहीं करना है, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस रहता है. अगर उसने हिट किया है तो फिर उसको चेतावनी मिलती है.
1: ये जो कराते जब रिंग में खेला जाता है तो ड्यूरेशन वाइज इसकी समय निश्चित है
0: हाँ
1: या
0: सर,
1: कुछ जो जिसको कहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप कितने चरण में ये पूरा हो जाएगा?
0: सर इसमें दो तरीके होते हैं. एक तो काता, जिसमें हमें सिर्फ टेक्निक यूज करनी होती है, एक बॉन्डेड 4 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट, 6 मिनट तक हमें पूरा कंप्लीट करना होता है. उसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति उस सारी टेक्निक को जो उसने सीखी है, पर्टिकुलर उनके नाम है अलग अलग,
1: जी
0: उसको प्रदर्शित करेगा और जज उसके तरीके पे, उसके ड्रेसअप पे, सब पे नंबर देंगे. साथ ही साथ कुमिते जिसे कहते हैं, फाइट, दो प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं, उसमें एज के अकॉर्डिंग, जो
1: जी
0: बच्चे की एज है उसके हिसाब से टाइम सेट होता है. जैसे सीनियर्स में 3 मिनट का गेम होता है, जूनियर्स में अप टू 1.5 से 2 मिनट का गेम होता है, गर्ल्स में 2 मिनट का गेम होता है, सीनियर्स में भी इस तरीके से, छोटे बच्चों में 1 मिनट, इस तरीके से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दी होती है.
1: आप काफ़ी समय से बच्चों को सिखा भी रही हैं,
0: जी
1: कराते और जूडो और पूरी एकेडमी चलाती हैं, तो किस तरह का अनुभव है इस गेम को लेकर? कितना उत्साह है बच्चों में, खास तौर से लड़कियों में और उनके अभिभावकों में भी?
0: सर, अब मेरे पास बहुत सारे अभिभावक आते रहे हैं और उनका कहना है, मैम हमारी बच्ची झिझकती बहुत है, बोल नहीं पाती है. तो मेरा उनसे कहना है, मैंने कहा आप यहाँ छोड़िए उसको, धीरे धीरे उसमें जब अपनी विश्वास आएगा खुद में तो ये बच्ची बोलना भी सीखेगी और विपरीत परिस्थिति में सिखाएगी भी दूसरों को कि मुझे नहीं टच करना है, या मुझे जो भी परिस्थिति है, मैं
1: जी
0: नहीं कह
1: जी
0: सकती किस तरीके की, कभी कभी होता है.

0: दोस्त ही अपने आप बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ भी बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं सच कहूँ तो मेरे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे खेल के जाते थे और अभी वापस कहीं मिलते हैं, अरे मैम आपने हमें कराते सिखाया था, तो बहुत खुशी होती है कि वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए टीचर।
1: यानी जब स्टूडेंट सफलता प्राप्त करके वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर गुरु को गर्व होना स्वाभाविक सा लगता
0: बिल्कुल
1: है। कराते गेम में जो रिस्क की बात है, और कई बार लड़कियां सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाती हैं कि इसमें रिस्क बहुत है, चोट लग जाएगी, तो रिस्क कितना हो सकता है, कितना कम किया जाए?

0: गर्व होना स्वाभाविक सा लगता
1: बिल्कुल
0: है। कराते गेम में जो रिस्क की बात है, और कई बार लड़कियां सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाती हैं कि इसमें रिस्क बहुत है, चोट लग जाएगी, तो रिस्क कितना हो सकता है, कितना कम किया जा सकता है?
1: सर, कम करने की बात तो जो स्पोर्ट्स वे पे है रिस्क तो कम ही है,
0: जी
1: लेकिन पेरेंट्स के दिमाग से रिस्क निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उन्हें लगता है कि अरे हम कैसे करेंगे, बच्ची को चोट लग जाएगी। जो मैंने अभी सेफ्टी गार्ड की आपको बात की थी, वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, और पर्टिकुलर जब गेम खेलने की बात आती है, प्रतियोगिताओं की खास तौर से, वहां पे उनका यूज होता है। अब आपको कहूं मैं, अचानक कोई सड़क चलते ये हो रहा है कि किसी लड़की को छेड़ा, तो वहां तो आपको चोट लगेगी भी। और मेरा मानना है, आप अगर जितनी खाती हैं, लड़कियों की बात कर रही हूं पर्टिकुलर, उससे दुगनी मारनी चाहिए
0: पावर से।
1: पावर से। मैं वही सिखाती हूं
0: यानी
1: अभी।
0: लड़कियों की झिझक दूर करने में ये एक
1: बिल्कुल
0: महत्वपूर्ण पॉइंट है।
1: होता क्या है सर, मैंने अब तक देखा, मेरी कुछ बच्चियां बोलती नहीं थी, अरे मैम चोट लग जाएगी। मैंने कहा चलो आप मुझे मारो, जब मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ मैं बहुत अलग तरीके से करवाती हूँ, कम ऑन हिट मी, नहीं मैम आपके लग जाएगी। मैंने कहा अगर आप मेरे नहीं मारोगी तो फिर मैं आपके मारूंगी, नाउ गेट रेडी। देन दे स्टार्टेड ग्रेजुअली, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम लोग लड़कियों को हमेशा ही नहीं, इसको नहीं मारना, उसको ये नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, यही सब सिखाते हैं। तो उसमें मानसिक तौर पे उनको चेंज लाने में उनमें बहुत वक्त लग जाता है।
0: तो जब हमने शुरुआत में बात की थी कि जो हम कराते में आते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन सीखते
1: जी
0: हैं, एंड देन फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास होती है तो हमारे पास जो सेफ्टी, आत्मरक्षा के लिए एक मजबूत, हमारे विचार तंत्र मजबूत हो जाता है।
1: यस
0: आप किस तरह से डिफाइन करेंगी कि वास्तव में लड़कियों के लिए और सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खेल है और इसको हमें सीखना चाहिए?
1: मैं आपको बता दूं, मेरी कुछ बच्चियां हैं जो आई बहुत झिझकती थी, उदाहरण से दूंगी आपको मैं, मैम मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं, मुझे नहीं आएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। एक दिन दो दिन, धीरे धीरे मैंने उन्हें ग्रेजुअली बोला, और जिस दिन उन्होंने बहुत अच्छा, मैंने पंच से शुरुआत करती हूँ हमेशा कि बेटा अगर कोई मारेगा तो आप रोकोगी कैसे, घर पे कभी कभी हो जाता है प्यार में भी या गुस्से में भी, आजकल नहीं उठाते मगर हमारे जमाने में तो शुरुआत ही थप्पड़ों से हो जाती थी, अगर कुछ गलती किया तो थप्पड़। तो तुम जिस तरीके से हाथ उठाती हो, अगर तुमने हाथ उठाया है तो 101% तुम्हारे अंदर ये तो है कि तुम कर लोगी। वहां से बच्चे जब ये बोलते हैं, मैम आज जब हमने आए यहाँ पे तो हम अपनी पढ़ाई करके आए हैं, हम आज हमने अपने घर के काम भी किए। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, अपने माँ बाप की मदद करो। तो वो जब सब करके निकलते हैं तो एक सिंपल शब्द में बोलते हैं, मैम आजकल ना हम अपने सही सारे काम बहुत तरीके से करते हैं। और उसके बाद जब ये सुन के मुझे जो लगता है, और पेरेंट्स बाद में जो फीडबैक देते हैं, बोले मैम हमारा बच्चा आजकल बहुत अच्छे से सारे काम करता है, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनता है, और
0: अच्छा
1: अगर हमने बोला पढ़ाई कर लो तो वो पढ़ाई भी करता है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ आने का सबसे पहले लगता है, मैं नहीं जाऊँगा तो फिर मेरे क्लास में सुनूंगी।
0: जी
1: तो मुद्दा ये है कि हमें उसको, हमारा जो प्रशिक्षक है, कोई भी मैं हूँ या कोई भी हो,
0: कोई भी हो,
1: वो उसको किस तरीके से प्रशिक्षित करता है।
0: खेलों की दुनिया में आजकल एक और चीज़ हम देखने में आते हैं, बल्कि एक समस्या के रूप में, कि कई बच्चे जब एंट्री लेते हैं किसी भी गेम में और फिर वो थोड़ा आधा सीखते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, या उनका मन के यार मैं गलत खेल में आ गया, मुझे दूसरा अडॉप्ट करना था, ऐसे बच्चे आपके पास में भी आते होंगे। किस तरह से आप उनको समझाते हैं कि इस गेम को रेगुलर करना कितना ज़रूरी है?
1: बहुत आसान है मेरे लिए, जैसा आपको पता ही है मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं उनको एक ही एग्जाम्पल से देती हूँ। मैंने बेटा आपने अभी एग्जाम क्लास में एंट्री की है तो कम से कम 1 साल तो लगेगा ना आपको रिजल्ट आने में,
0: जी
1: जैसे तुम स्कूल में जाते हो और 1 साल लगता है तुम्हें रिजल्ट आने में कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा, सफल होगे या असफल होगे, और बीच में छोड़ दोगे फिर तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के। तो धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे खेद व्यक्त करूंगी, इसमें जो आपने एक प्रश्न किया है मुझसे, यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे बच्चे से ज्यादा मुझे उनके पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है, अरे मैम ये तो नहीं कर रहा, 2 दिन आए। देखिए क्या होता है, कोई भी खेल शारीरिक परिश्रम मांगता है,
0: जी
1: आजकल के परिवेश में बच्चों पे शारीरिक परिश्रम करने की आदत नहीं है, ना ही

0: उनके अभिभावकों को है। मैं बहुत खुल के विचार रख रही हूँ अपने इस समय, क्योंकि शायद जो सुने माँ बाप वो समझ पाए। शारीरिक परिश्रम बहुत जरूरी है अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो।
1: यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि आप किसी भी गेम में हैं और स्पेशली यदि कराटे में है तो आपको निश्चित तौर पर इसको रेगुलराइज रखना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जितना समय लगता है एक क्लास को पास करने में उतना समय
0: उतना
1: इस गेम को
0: समय तो देना चाहिए,
1: देना ही चाहिए। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हम ये समझ पाए कि कराटे एक महत्वपूर्ण खेल है अपने अनुशासन के लिए, अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए और स्वयं को मजबूती से लोगों के सामने रखने के लिए। आज इस संबंध में हमने बातचीत की कराटे चैंपियन, नेशनल कराटे चैंपियन अर्चना सिंह जी से। मैडम, आज आप स्टूडियो में आई आकाशवाणी जयपुर के और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सभी श्रोताओं को और धन्यवाद सर आपको भी।
1: आत्मरक्षा के लिए कराते। श्रोताओं, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे, जानकारी दे रही थी अर्चना सिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कराटे चैंपियन अर्चना सिंह से गोपाल लखन की बातचीत। अब हमें आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, इसी दिन इसी समय। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित किया गया।

पढ़ना सब जानते हैं, पर क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं।

215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम आरू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। जी हाँ, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत राजकुमार रिजवी की गाई इस गजल के साथ।

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला महरू चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।